शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इस पहचानने की कोशिश में हमारे जो मेहमान होते हैं वो हमारा साथ देते हैं, हमें बताते हैं क्या करें, क्या ना करें, क्या सोचें। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सुनीता मैम हैं। मैं सुनीता मैम का बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपने बारे में

0: थोड़ा सा बताएं, आप कौन है सुनीता मैम, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता, अगर मैं उसके साथ एक विशेषण जोड़ दूं तो साधारण सुनीता।
0: वाह क्या बात है,
1: बस ये मेरी पहचान है। और क्या बोलूं कि कहाँ रहती हूँ, हाँ इस जमीन पे हूँ, जमीन से जुड़ी हूँ और ठौर ठिकाना बहुत जगह है, कभी अमेरिका तो कभी भारत, तो कभी भारत के हिमाचल में, तो कभी दिल्ली में, तो कभी गोवा में। तो भगवान की दया से ऐसा कुछ वक्त रहा है कि मुझे जगह जगह रहने को मिलता है। अब मैं रिटायर्ड हूँ तो घूम सकती हूँ इधर उधर।
0: जी जी, नहीं तो रिटायर्ड मतलब आप किसी प्रोफेशन में थी, कुछ विभाग में थी, कुछ कर रही थी आप?
1: जी मैं पढ़ाई से जुड़ी थी और मैं अध्यापिका रही हूँ और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ट्रेनर, और जिसमें मैं इंग्लिश की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर भी रही हूँ। और कैसे कोई भी भाषा, देखिए हम हिंदी बोलें तो हिंदी की का भी उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए, और सही नहीं होने से उसका जो अर्थ है वो विकृत हो जाता है।
0: जी।
1: ऐसे ही अंग्रेजी में भी ये है, तो मैं प्रोनंसिएशन पे काफ़ी जोर देती थी और उसको न्यूट्रलाइज करने का, कि ना तो आप अमेरिकन ढंग से बोलें, ना आप अपना रीजनल टच उसमें लेके आए, जैसे अगर बंगाली होते तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा एक तरीका हो जाता है, तो उससे फिर मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाते हैं। तो मैं साधारणतः यही चाहती हूँ कि जो भी भाषा हो उसको जितना हो सके उसको स्वच्छ स्पष्ट रूप से बोला जाए, और वही मैं सिखाती थी।
0: बहुत बिल्कुल सही बात बताई सुनीता मैम ने कि भाषा वैसे भी किसी सहारे की मोहताज नहीं होती, अपने आप में बहुत ताकतवर चीज होती है भाषा। और बड़ी मजेदार बात है दोस्तों, हम इंसानों को, मनुष्यों को प्रकृति से, प्रकृति के दूसरे जीवों से अलग हमारी भाषा ही बनाती है। हमने उसको कितना डेवलप किया है, कितनी भाषाएं मौजूद हैं और हम उसको कितने प्यार से बोलते हैं। तो ये भाषाएं बहुत ताकतवर होती है दोस्तों, इनका गलत इस्तेमाल कभी ना करिएगा।
1: और फिर राष्ट्रभाषा
0: जी,
1: तो वो हमारी माँ है
0: जी,
1: तो उसका सम्मान तो करना ही है,
0: करना ही है,
1: जो बोले वो अच्छा बोले।
0: बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। तो जैसा कि इस प्रोग्राम का थीम है सुनीता जी, जो इस प्रोग्राम की आत्मा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है आध्यात्म। तो मुझे बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए, अपने विचार साझा कीजिए कि आध्यात्म से आप क्या समझती हैं, आप क्या मानती हैं, आध्यात्म क्या है?
1: जी, सो अध्यात्म या जो आजकल बाकी लोग जैसा इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी,
0: जी,
1: उसका अर्थ है स्वयं की उन्नति। अब जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो हमारे माइंड में, हमारे मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। मैं जन साधारण की बात कर रही हूँ, वो सोचते हैं कि शायद कोई गेरुए रंग का चोगा पहनना होगा, या कोई चीज से परहेज करते होंगे, या कुछ और ऐसा होगा। लेकिन सही माने में अध्यात्म का अर्थ केवल स्वयं का उद्धार है। हम अभी जिस तल पर हैं उससे हम ऊपर उठें, हम स्वयं को जानें, स्वयं को देखें कि हम खुद कौन हैं, मैं कौन हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन का मूल बन जाता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। और अध्यात्म को कभी भी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, ये कोई भी एक धर्म नहीं है, हिंदू क्रिश्चियन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इंसान को अपना समझना, अपनी वृत्तियों को समझना, अपने ध्येय को समझना, अपनी हम क्या करते हैं और कैसी हमारी सोच है, स्वयं को जानना, ये है अध्यात्म
0: जी। अमेजिंग। जाहिर सी बात है कितने प्यारे ढंग से सुनीता मैम ने इस चीज को समझाने की कोशिश की दोस्तों कि अध्यात्म, और बहुत ही खूबसूरत से उन्होंने अध्यात्म और धर्म के बीच का फर्क भी हमें समझाया, बहुत खूबसूरत। अब इसी विषय में आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, उससे पहले हम लोग बस जरा सी देर रुकते हैं, एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आपके पास वापस आता हूं।

0: अब इसी बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसे कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो एक शब्द आया धर्म, तो उसको आपने हमें समझाया। फिर एक और शब्द आता है प्रार्थना, प्रेयर, और एक और शब्द आता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो हमारे सुनने वालों के लिए और आपस में हम जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसके उद्देश्य के लिए, प्रार्थना और ध्यान के बीच का फर्क या उनकी सिमिलैरिटी के बारे में, सुनीता जी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगी, मेडिटेशन एंड प्रेयर यानी कि ध्यान और प्रार्थना?
1: जी, सो ये आजकल बहुत ही एक प्रचलित शब्द है मेडिटेशन, और ये एक एक तरह का फैड भी बन गया है, फैशन भी बन गया है, और लोग इसमें अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो जी मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है। लेकिन जब सच में वो करने बैठते हैं, आम जनता की बात कर रही हूँ, तो 5 मिनट भी इतने लंबे लगते हैं, इतने लंबे लगते हैं, और हर तरह के उसमें आपके ख्याल आ रहे होते हैं
0: जी।
1: तो यहाँ पे मैं ये जरूर इसमें फर्क बताना चाहूंगी कि ध्यान या मेडिटेशन आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी ही गतिविधियों को देखना है, परखना है, कहाँ दौड़ रहा है, किसके पीछे, किस मकसद से, मेरी वृत्ति क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन भले के लिए कुछ कर रहा हूँ या किसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसमें भी देखिए आप बहुत अंतर है। तो ये जब हम ध्यान में बैठते हैं, या इससे तात्पर्य ये भी है कि ये सही अवलोकन है कि इसमें जब हम बैठते हैं तो हम इन प्रश्नों के बारे में अपनी ही वृत्ति को देखते हैं। अब देखिए, अब एक चोर मानिए, वो भी तो आंख बंद करके बैठ सकता है ना, लेकिन आप सोचिए वो क्या सोच रहा होगा, वो चुपचाप बैठकर अगले दाम के बारे में सोच रहा होगा
0: जी,
1: है ना, कि वो केवल सिर्फ प्रिटेंड करना नहीं है, है ना, वो तो अपनी चोरी की युक्ति निकाल सकता है, लेकिन यहाँ फिर सच्चाई का मामला है अपनी ही चोरी पकड़ने का।
0: जी जी,
1: ये है कि मैं जो ये कब काम करने लगी हूँ, या मैं ऐसे जो शब्द बोल रही हूँ, या मैं किसी के आगे बहुत झुक रही हूँ, झुक कर नमस्कार कर रही हूँ, और जैसे ही वो चले जाते हैं मैं बोलती हूँ अरे फिर आ गए परेशान करने, और फिर ये ऐसे या फिर ये, तो ये अपनी चोरी पकड़नी है, अपनी अपने को स्वयं देखना है कि हम कितने सच्चाई से चल रहे हैं
0: जी, जी।
1: इस बारे में सोचना का अर्थ है मेडिटेशन और ध्यान। फिर जब आप अपने के लिए जब सोचते हैं तो आप देखिए आपके आधा घंटा या घंटा भी निकल सकता है, और तपस्वी लोग आपको पता ही है कि वो फिर घंटों निकाल देते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: ये है सही माने
0: बहुत खूब। दोस्तों आपने जाना कि सुनीता मैम ने कितने प्यार से इस चीज को समझाया है कि ध्यान और प्रेयर प्रार्थना किस तरीके से हमें इतना मग्न कर देती है अपने आप में।
1: प्रार्थना आपने मेरे को बोला
0: जी।
1: प्रार्थना तो हम बस हमारी एक ये विश है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसी को बस ऊंचा से हम बोल रहे हैं, और वो बदलती रहती है। प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़की मिल जाए, प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़का मिल जाए, आज प्रार्थना कर रहा हूँ वो मुझे ये घर मिल जाए, ये इतना पैसा मिल जाए, अब इसको तो प्रार्थना नहीं बोलेंगे। प्रार्थना का मतलब है आप सच में एक उच्च शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं और उसका धन्यवाद दे रहे हैं, तब तो हम कहेंगे ये प्रार्थना। ध्यान में भी वही है कि आप कृतज्ञता को महसूस करें।
0: वेरी राइट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक फर्क आ रहा है कि प्रार्थना हम कुछ स्वार्थी होकर करने लगते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर भी, स्वार्थ अपने आप में एक लेवल तक ठीक होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को उचित रख पाएंगे तभी तो आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे, लेकिन बस बाल भरे का फर्क होता है, हम कभी अपने लिए स्वार्थी होते हुए उस बाल को कब पार करते हैं पता ही नहीं चलता। यही संभलने की जरूरत है, इसी को आध्यात्म कहते हैं। बहुत खूब, तो जाहिर सी बात है कुछ फायदे हमें नजर आए अभी सुनीता जी ने बताया। तो सुनीता जी, इस बारे में आप थोड़ा और खुल के हमें बताइए कि आध्यात्म किसी भी इंसान को कैसे और ज्यादा पॉजिटिव कर सकती है और सकारात्मक बना सकती है और एक अच्छा इंसान बना सकती है।
1: जी, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, जैसे मैंने कहा, ये एक सत्य के पथ पर चलने का तरीका है। और जब हम खुद से सच्चे रहेंगे तो हम हमेशा सच्चाई से ही आगे बढ़ेंगे और परोपकार की तरफ भी बढ़ेंगे। आप एक बार ही फिर, आपने बोला कि पॉजिटिव,
0: जी
1: है ना, कि पॉजिटिव जो है कि सच जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इन अ सेंस कि हमें आम किस चीज का डर होता है, कभी मृत्यु का डर, कभी ये जीवन जानते हुए कि ये बिल्कुल क्षण भंगुर है, फिर भी हम डरते हैं कि अगर मेरा ये छिन गया या मृत्यु हो गई या बीमारी आ गई। ये सब चीज जो है, अगर हम ये समझें कि हम एक प्रकृति का एक अंग है, एक रूप भी है, जैसे एक पेड़ भी बड़ा होता है, पत्ते आते हैं उसमें नए नए, ऐसे ही हमारी भी अपने शरीर भी जो है वो उन्हीं पंचभूतों का बना हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें हम में भी हैं और प्रकृति में भी यही है। तो हम प्रकृति का ही एक अंग हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि नहीं मैं अलग सा दिखता हूं तो मैं ये बिल्कुल अलग सा हूं। अब पॉजिटिविटी की बात ये है कि जैसे एक वृक्ष में जितनी हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही वो पनपता है। ऐसे ही हम अपने शरीर रूपी वृक्ष में हम जितना अच्छी खाद, मतलब अच्छा ज्ञान, सही कर्म, ये सब करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मकता को पकड़े रहेगा। और जो जितनी भी विषमताएं हैं जिंदगी की, उसको भी समझेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ कठिन काम या मेहनत करने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई भी चीज हमें हासिल बिना एक मेहनत करे नहीं होती है। तो ये सच जानते हुए हम जल्दी से विफल नहीं महसूस करेंगे और ना ही हम आलस करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हिम्मत भी बनी रहेगी कि अभी नहीं हुआ तो थोड़ी और देर में हो जाएगा, इसमें और काम करना होगा, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि क्या मैंने ये काम करने के लिए मैंने पूरी स्किल्स मैंने जुटा ली हैं, कि या मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो सच को धारण किए हुए आपका जीवन जो है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगा, दुनिया की तरफ भी, लोगों की तरफ भी और अपनी तरफ भी।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात सुनीता मैम ने हमें बताई है कि किस तरीके से आध्यात्म हमको सकारात्मक रहने में कैसे कैसे मदद करता है। आराम से टेक योर टाइम दोस्तों, विचार कीजिए और तब तक इस भजन को सुनिए।

0: बहुत खूब, बहुत खूब। आध्यात्म को अगर हम अपनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इतने समय से जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रही थी मैम, उससे जो भी अनुभव आपको हुए, उसके हिसाब से हमें बताइए कि आध्यात्म का हमारे संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, उन पर क्या फर्क पड़ता है।
1: जी फिर से इस चीज को दोबारा कहूंगी कि जब हम सच के साथ हैं तो, और हम अंतर्मुखी होते हैं
0: जी,
1: आध्यात्मिकता में हम अक्सर अंतर्मुखी रहते हैं और हम हमेशा अपना ही अवलोकन करते रहते हैं, तो जाहिर है कि हम ये भी सोचते होंगे या प्रश्न करते होंगे कि मेरे जो माता पिता है उनके प्रति मेरा क्या और कैसा संबंध है, क्या ये वाकई, अब ये तो एक संयोग की बात है कि मैं उनके अब घर में ही पैदा हुई हूँ
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ जो मेरा अब संबंध बढ़ रहा है, क्या वो एक सच के बल पर है या फिर वो एक या समाज से भी कहिए या दोस्तों से कहिए या अपने जहां पे आप काम करते हैं, किसी भी कोई भी संबंध में अपने एक सच्चाई को हमने जरूर देखना है। अक्सर जहां रिश्तेदारी और समाज की बात आती है, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो कोई ना कोई अपने एक किसी मकसद से हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है केवल एक मकसद से कि इससे मैंने दोस्ती रखी तो मुझे फायदा होगा, समाज में मैंने अगर वहां जाके कुछ ये दान करा या ऐसे करा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वो सच में सच्चाई पे नहीं बेस्ड है। और इस तरीके से हम एक तरीके से हम अपने संसाधनों का, हमारे जो संसाधन क्या है, हमारे पास जो प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास दया है, प्यार है, समय है, ये इनको मैं संसाधन बोलती हूँ, क्या हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो ये इससे हमें हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि मैं किस लिए किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या ये दिखावा है, व्यापार है, कहीं लेना देना तो नहीं है या करुणा है, तो सच होगा तो दूर तक जाएगा और अमर भी होगा।
0: जी जी जी, बड़ी खूबसूरत बात, किस तरीके से संबंधों में भी हम सुधार कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर हम आध्यात्म को अपना लें। बहुत खूब, तो चलिए एक छोटा सा गैप लेते हुए, एक भजन को सुनते हुए वो विचार करते हैं और वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, आध्यात्म और आज का जमाना, और आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी हमें बताया कि आप भाषा की विशेषज्ञ रहीं, इंग्लिश की आप अध्यापिका रहीं, टीचर रहीं, फैकल्टी रहीं। तो हम लोग एक तरीके से अगर साइंस को अप्रोच करते हुए आज की जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इस वार्तालाप में भी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान, इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इनमें सिमिलैरिटी है, अलगाव है, अलगाव है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे का सहारा भी इनको मिल सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए हमें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
1: जी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन लोक धर्म में ऐसा समझा जाता है कि या तो फिर कोई साइंटिफिक होगा या कोई स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि उनके माइंड में, उनके मन में, उनके विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ ही बहुत विकृत है
0: जी।
1: वो गलत है, वो स्वयं की तरफ, वो बाहर की तरफ है और अंतर्मुखी तो है ही नहीं। अब जो साइंस है वो दोनों, मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ क्यों चलते हैं। साइंस क्या करती है? साइंस बोलती है कि जो ये चीज, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें वो एकाग्र होकर, उसके पीछे लगकर उसका अनुसंधान करती है कि नहीं, उसे देखने की कोशिश करती है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करती है। जी, आध्यात्मिकता भी यही काम करती है
0: जी।
1: वहां पे हम, हमारे जो जिसको इक्विपमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हमारे, वो अलग हो जाते हैं, जैसे टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप, इन इन सब चीज का यूज इस्तेमाल कर लिया। आध्यात्मिकता में हम भी खुद को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होकर खुद को ही देखते रहते हैं कि अब ये मेरे में जो इस समय विचार उठ रहा है, या मेरे को ये सब चीज देखकर, कोई भी पर्टिकुलर, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, किसी को देखकर कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये मुझे क्यों आ रहा है, मुझे मेरे गुस्से का कारण क्या है। इतना ही सोचते सोचते आप ये सोचिए कि जैसे आपने एक शांत, हमारा मन जो है, हमारी जो असली प्रकृति है वो बहुत शांत है
0: जी।
1: और हम उसमें भावनाओं को लेकर, भावनाएं आप यूं समझिए एक लहरों के समान है कि, तो समुद्र में जो भावनाएं, जो लहरें हैं, क्या वो सच्ची हैं ना? वो क्षणभंगुर है, उठती है और फिर ढल जाती है, उठती है और फिर ढल जाती है। गुस्से को जब हम देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये भी एक लहर की तरह उठा, जैसे समुद्र में कंकड़ डाला तो वो उसके चारों तरफ जो है वो रिपल्स बन जाएंगे, और फिर उसको वहीं के वहीं हम थोड़ी देर और देखते रहें तो वो फिर वहीं समतल हो जाएंगे जैसे लहरें। तो भावनाओं को हमको कितना महत्व देना है ये हमें समझना पड़ेगा, ये भी क्षणभंगुर है। कभी तो हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कभी हमें बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन ये सब जो है, ये जो हमारा अहंकार है वो महसूस कर रहा है, शरीर नहीं
0: जी, जी
1: शरीर नहीं। और क्या मैं सच में शरीर हूं? वो भी नहीं है। हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं वो तो एक बाहर का देखना हो गया, क्या सच में ये मेरी दृष्टि भी है? मेरी दृष्टि में, बाहर को देखने में मेरी दृष्टि में क्या इसका महत्व है, और वो क्या है? वो बहुत कुछ अलग है। तो साइंस और आध्यात्मिकता दोनों एक ही काम करते हैं, स्वयं को जानने का और साइंस जो है वो उसका कारण दूसरे प्रकरणों से करती है, बस इतना ही फर्क है।
0: जी जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से फर्क और सिमिलैरिटी और आपस में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ रिलेशनशिप के बारे में अभी सुनीता जी ने हमें समझाया, अध्यात्म और विज्ञान के बीच का मामला, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन का आनंद लेते हुए इस संबंध के बारे में सोचिए।

0: बहुत सुंदर। तो जाहिर सी बात है, क्या ये आध्यात्म, क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये हमें बचपन से पता चलती है, कुछ हमारे माहौल के बारे, माहौल हमें सिखा देता है, हमारे परिवार से हमें पता चलती है, या ये उम्र के साथ ही आना शुरू होती है, हम अपने बारे में विचार करना शुरू करते हैं, कौन है हम, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ होता है मैम, या हमें बचपन से ही इसके बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, हमको एहसास कराया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगी आप?
1: जी, हमें अगर हम सभी अपना अपना जीवन देखें तो हमें एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही मिल जाता है। हमने ये बैठकर कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद कौन हूं, मेरी अपनी प्रकृति क्या है और मुझे क्या करना है। हमें माँ बाप जब पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, वो साथ साथ सिखा रहे होते हैं कि ऐसा करो, यू नो, इधर पांव छुओ, इधर सच बोलो, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करके आपको ये कमाना है, फिर पैसा कमाना है, फिर उसमें लगा देते हैं। तो ये तो सारा एक स्क्रिप्ट मिला हुआ नहीं है हमें। क्या ये हमने खुद से कभी सोचा है कि क्या इन सब चीजों की हमें जरूरत है? वो हमें एक बाहरी जो दुनिया है वो हमें एक रेस में लगा देती है
0: जी।
1: आप उनसे पूछिए जो रोज कितनी दूर काम करने भी जाते हैं और फिर कैसे, यू नो, बॉसेस के अधीन होने पे वो क्या क्या झेलते हैं और कितनी कुटिलताएं उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो है ये एक तरह का स्क्रिप्ट हमें मिला होता है। जब हम अपने साथ बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, ये सब चीज जो है ये मेरा जीने का मकसद नहीं होता। ये सब तो पशु भी करते हैं ना, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं।

0: हैं, उनके लिए भी खाना जुटा के लाते हैं।
1: जी जी
0: पर हमारे सिर्फ संसाधनों में है कि कैसे हम अलग अलग करते हैं, लेकिन इंसान होते हुए हमें अपनी बेचैनी समझनी है कि हमारे अंदर किस चीज की बेचैनी है। आपने ये सुना होगा कि कितने बड़े बड़े जो इतने अमीर लोग भी हैं, क्या वो केवल पैसे से कभी खुश रहे हैं?
1: जी जी सुना है।
0: फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है, और वो कमी क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं एक सिर्फ पैसे के पीछे या दुनिया के पीछे। मेरे साथ वाले के पास दो कार हैं तो मेरे पास क्यों नहीं हो, या मेरे पास ये है, सभी बस इस गलत भाग दौड़ में लगे हैं, स्वयं से नहीं कि मुझे मेरे मन को मेरी आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा माने मेरा सच क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे संतुष्ट हूँ, उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। अगर सोचें वही अध्यात्मिकता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी बात बताई आपने सवाल। मैम आपकी सारी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम के विचार विमर्श को सुनकर, अगर कोई व्यक्ति तय करे कि चलिए मैं अध्यात्म अपनाता हूं, क्योंकि बहुत तरीके से मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, मजा आएगा, तो आप उसके क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक दो तीन कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए और सरल भाषा में आपको अध्यात्म प्राप्त होगा?
0: जी इसमें एक तो सच को पकड़ना है, ठीक है, और जो हम जिस तरीके से हम जिसको आजकल के जमाने में बोलते हैं ना, हमारे गोल्स बनाए हुए हैं, तो खुद जानना है कि ये मेरे को थोपे गए हैं या सौंपे गए हैं।
1: ओके
0: और अच्छा। क्या आश्विकता के साथ जीना है या नहीं जीना। और आध्यात्मिकता मतलब सच्चाई के साथ जीना। अब सही धर्म हमारा जो है वो परोपकार है।
1: जी जी
0: परोपकार कैसे, अब आप, मैं उसमें ये नहीं कहूंगी कि आप पैसा नहीं कमाइए, पैसा जरूर कमाइए, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो तभी आप और 10 लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे। लेकिन ये जरूर देखिए कि मैं किस काम से बना रहा हूं।
1: जी
0: क्या मैं 2 का 4 बनाने के लिए मुझे गलत चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं? क्या मैं बॉम्ब्स बना रहा हूं, क्या मैं एम्यूनिशन बना रहा हूं, क्या मैं कैसी कैसी चीजें मैं धन प्राप्त करने के लिए मैं क्या कैसा काम कर रहा हूं, वो देखिए।
1: जी, जी जी
0: उसका देखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए रतन टाटा, सुधा मूर्ति जैसे, जो उन्होंने खूब पैसा भी कमाया लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हैं, परोपकारी हैं। आपको मालूम है सुधा जी तो वो बोलती हैं कि एक दिन मैं सब्जी वाली बन के बैठ जाती हूँ।
1: ओह माय गॉड। जी
0: यस, ये सच है कि सिर्फ ये महसूस करने के लिए। अब जिसमें इतनी इंसानियत हो
1: जी,
0: वो कहां से आई है, आध्यात्मिकता से।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अमीर लोग हैं आजकल जो प्रचलन है, कहां कहां जाके अपने जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोते को समझाया और बोला कि नहीं, मैं, तुम बोल रहे हो कि मुझे मैकडॉनल्ड्स ले जाओ या मेरे सारे फ्रेंड्स को वहां बुला के खिलाओ पिलाओ, तो वो नहीं, मैं वो नहीं, वो उसको अनाथालय लेके गई और बोला कि ये बच्चे भी हैं, इनको देखकर, इनके साथ अपना जन्मदिन मनाकर हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। तो कैसे आप साथ साथ बचपन से ही सिखाते हैं, आपने पूछा ना कि क्या हमें ये सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना, लेकिन सिखाने वाला भी सिर्फ केवल एक चोगा पहने हुए नहीं हो, केवल एक छैने बजाकर कीर्तन करने वाला ना हो और फिर वो अपने घर के सेवक को ही बुरी तरह बोले।
1: जी जी
0: वो तो फिर परोपकार नहीं हुआ,
1: वो तो सब नाटक ही हो गया फिर। दैट इज राइट, दैट इज वेरी राइट।
0: तो जी ने देखे, वो एक रेडी वाले उनके घर के सामने से जा रहे थे या सामने खड़े भी होते थे, उन्होंने देखा कि ये बेचारा सब्जी बेच रहा है, अभी मैं इसके लिए क्या करूं, तो करुणा है ना मन में,
1: जी
0: अपने पैसे में अपने ऐश्वर्य में गुम नहीं है, वो सोच रहे हैं, उसको देखकर उनको विचार आ रहा है, केवल विचार आने तक ही रुक नहीं जाते हैं, वो अपनी हैसियत से अपने समझ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सी चीज, वो बोलते हैं इन सब के लिए जाके ना इनके लिए कुर्सी रख के आओ वहां पे,
1: जी जी जी जी जी,
0: या उनके छतरी पहुंचा दी कि ये इतने घंटे जो इनको खड़े होना पड़ता है तो वो बैठ जाए। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये आध्यात्मिकता से आती है, अपने सामर्थ्य से आप जब भी किसी का कुछ कर पाए जरूर करें।
1: जी जी,
0: और हमें बहुत मौके मिलते हैं, हम मौकों को ना गवाएं और अपनी जिंदगी को भी बेकार ना जाने दें। पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा ना सोचें मैंने क्या किया,
1: Absolutely.
0: क्या मैंने कुछ किया कि नहीं किया, किसी के लिए कुछ दे पाई कि नहीं दे पाई।
1: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने आज सुनीता जी के विचार सुने, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं गहराई तक छू के गई होंगी। विचार करते रहिए और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिल ही रहा है। सुनीता जी आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपने अपने दिल की बातें हमें बताई। अब हम ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है कि इस ज्ञान को हम अपने बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका।
0: आभार आपका समीर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का और ये साझा करने का कि हमें जिंदगी में, मैं कोई बहुत, कोई भी, जैसे मैंने बोला मेरा नाम ही साधारण सुनीता है, साधारण सी जिंदगी जीनी है लेकिन सच्ची
1: जी
0: जीनी है
1: जी।
0: बस धन्यवाद आपका बहुत।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज की शुरुआत मजरूह सुल्तानपुरी साहब के एक बेहद मशहूर शेर से है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज की हमारी अतिथि की रंग यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है। एक युवा कलाकार के रूप में शुरू हुआ ये सफर समय के साथ साथ एक ऐसे कारवां में बदल गया जिसने न केवल रंगमंच को समृद्ध किया बल्कि असंख्य विद्यार्थियों, कलाकारों और रंगकर्मियों को दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में कुछ लोग केवल किरदार निभाते हैं, कुछ नाटक निर्देशित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी पीढ़ियों को गढ़ते हैं। हमारी आज के अतिथि उन बिरले व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने मंच को केवल जिया नहीं बल्कि उसे अपने जीवन की साधना बना लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NST की एल्बिना, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग की पूर्व HOD, ललित कला संकाय की पूर्व डीन, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री, निर्देशक, शोधकर्ता और शिक्षिका, प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव का नाम भारतीय रंगमंच विशेषकर राजस्थान के रंग परिदृश्य में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। 4 दशकों से अधिक की उनकी रंग यात्रा में कोर्ट मार्शल, नटी बिनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक सिंह, मंटो की कहानियां जैसे अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन और अभिनय शामिल है। उन्होंने बैरी जॉन, बीवी कारंत, रामगोपाल बजाज और नसरुद्दीन शाह जैसे रंगमंच के दिग्गजों के साथ काम किया है। साथ ही अनगिनत विद्यार्थियों को रंगमंच की बारीकियां सिखाकर नई पीढ़ी के कलाकार तैयार किए हैं। लेकिन आज की बातचीत उनके पदों, पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची भर नहीं होगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस कलाकार को जिसने सपने देखे, संघर्ष किए, मंच की रोशनी और पर्दे के पीछे की चुनौतियों दोनों को जिया, जिसने अपने जीवन को रंगमंच के नाम पर समर्पित कर दिया। तो आइए बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत करते हैं प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव जी का। अर्चना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।
1: तो चलिए अर्चना जी, शुरुआत से ही कर लेते। ऐसा करते हैं कि उस छोटी सी अर्चना से मिलवाइए जो आगे चलकर रंगमंच की दुनिया में एक बड़ा नाम बनी। आपका बचपन कैसा रहा, कुछ ये तो बताइए।
2: बचपन तो सभी का बहुत ही हसीन होता है साहब, तो हमारा भी बचपन ऐसा ही था। बड़ी अटखेलियां थी, अल्हड़पन था, बहुत ही स्वतंत्र और उन्मुक्त मेरा बचपन था। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता को जाता है, उन्होंने मुझे इस तरीके से इतना खूबसूरत बचपन दिया कि जो जी चाहे वो करो। तो स्कूल में जब जब कुछ भी एक्टिविटीज होती थी, उस जमाने में छोटे छोटे नाटक भी होते थे, पंचतंत्र की कथाओं को हम लोग अभिनीत किया करते थे और उसमें माता पिता कहते थे कि तुम पार्टिसिपेट करो। और क्योंकि स्कूल में हमेशा आगे रहने का मुझे बड़ा कहते हैं एक शौक था और नेतृत्व करने की हमेशा एक ललक होती थी कि मेरा नाम टीचर्स जब लेती थी उस जमाने में तो लगता था कि हाँ मेरा जो कहते हैं वजूद है वो सार्थक हुआ। छोटी सी लड़की लेकिन अच्छा लगता था। मुझे आज भी वो चीज याद है जब प्रिंसिपल आती थी और मुझे कहती थी अर्चना तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहती थी मुझे गाना अच्छा लगता है, सुनाओ। तो इस तरीके से और शुरुआत मेरी साहब नाटक की जहां तक बात है, एक मुझे याद है एक एनुअल फंक्शन में एक नाटक करना था और उस नाटक में एक चिड़िया की कहानी थी वो चिड़िया जिसको पिंजरे में कैद कर दिया गया है और वो निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है, लेकिन तभी कोई एक छोटा सा बच्चा आता है और उसको मुक्त कर देता है और वो फिर गाती है, गुनगुनाती है, पूरी स्टेज का चक्कर लगाती है। तो मैं वो चिड़िया बनी थी।
1: वाह, मजा आ गया। ये तो आपने, यू हैव सेट द टोन। आपने एक उस एज में भी चिड़िया, और वो भी जो कैद वाली चिड़िया, एक संवेदनशील सी कहानी से शुरुआत कर दी आपने, तो यही कहूंगा मैं
2: जी
1: तो। और आपने बताया परिवार में भी अच्छा साहित्य और संगीत और कला का एकदम वातावरण था, तो वो कैसा था? आपके पेरेंट्स भी कलाओं से जुड़े हुए थे क्या? कैसा माहौल था?
2: जी दरअसल हमारे परिवार में कला और जीवन अलग अलग नहीं था।
1: ओहो
2: जिंदगी हम जीते थे कलाओं के साथ। माने काम कुछ भी हो, मेरे पिताजी लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर थे और लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर होते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में उन्होंने अरसे काम किया डायरेक्टर के तौर पर, और बहुत उम्दा लिखते थे, मुशायरे उस जमाने में हुआ करते थे, शेर व शायरी, उर्दू का बड़ा माहौल था घर में, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उस जमाने की इन लोगों की। लेकिन उन हमारे यहाँ बहुत जरूरी था माता की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी कि तुम्हें हर दिन एक कहानी पढ़नी है या महीने में एक कोई छोटी सी नॉवेल पढ़नी है, लेकिन वो साहित्यिक, उसकी एक ऐसी कृति होनी चाहिए जो कि आपको परिष्कृत करे। उस जमाने में हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हमारा जो सफर है वो इस तरीके से माँ पापा ने शुरू किया और वो चलता रहा चलता रहा। उस जमाने में धर्मयुग आया करता था, धर्मयुग हम लोग पढ़ते थे, और मतलब आप ये देखिए, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अमृत राय, आपके राग, ये क्या नाम है हमारे, इस वक्त मैं नाम बिल्कुल भूल
1: रवि
2: रही हूँ,
1: भारती, अग्गे,
2: रांगे राघव, रांगे राघव
1: रांगे
2: साहब।
1: राव जी, बिल्कुल
2: हाँ
1: साहब, जयपुर
2: हाँ इनको भी हम,
1: राजस्थान
2: हाँ तो पापा का कहना था बहुत खूबसूरत लिखा करते हैं इनकी कहानियां पढ़ो। तो बस इस तरीके से हमारा ये कहेंगे कि बचपन, और जैसे जैसे हम युवावस्था को आए तो उन्होंने हमको इस तरीके से पूरा मार्गदर्शन दिया कि पढ़ो और ये मत सोचो तुम्हें क्या बनना है, जिंदगी जियो, और जिंदगी इन तमाम साहित्य और कलाओं के साथ साथ ही है। इससे अगर तुम अलग हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है।
1: मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये बातचीत आपकी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि म्यूजिक और अच्छा, फिर थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं कि आपको कब लगा कि थिएटर केवल शौक नहीं है बल्कि एक जीवन का रास्ता बने? वो कौन सा ट्रिगर था या ऐसा कौन सा पल था कि आप रंगमंच से या मंच से जुड़ गई एक तरह से? वो कब शुरू हुआ आपकी लाइफ?
2: ये अगर औपचारिक दृष्टि से सोचा जाए तो कनोडिया कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी फर्स्ट ईयर
1: ओके
2: में,
1: अच्छा।
2: तो वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्कूल में छोटे छोटे नाटक किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक उसी साल मिस हेमलता प्रभु, जो हमारी नारी शिक्षा की स्तंभ थी, बल्कि हैं क्योंकि वो एक ऐसी मुझे लगता है शख्सियत है हमारी जिंदगी की जो कभी जाएंगी नहीं, वो हमारे आसपास ही हैं, और उनकी प्रेरणा से, वो तब रिटायर हो रही थी, उनका एग्जिट था कॉलेज से और मेरी एंट्री थी। लेकिन क्योंकि वो बापू नगर में ही रहा करती थी, मिस तरवे, कृष्णा तरवे और मिस हेमलता प्रभु, तो उनके साथ मेरा कई बार बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ साहित्य को लेके। कभी कभी वो कॉलेज आया करती थी कुछ कुछ संगोष्ठियों में, तो हम बैठते थे उनके साथ और उन्होंने उस जमाने में बताया। तो मैं एक चीज कहूंगी यहाँ, मुझे थोड़ी भाषा का दिक्कत थी, मुझे विदेशी नाटक बहुत अच्छे लगते थे, शेक्सपियर हुए, आपके इप्सन हुए, डॉल्स हाउस उनका जो नाटक है, एनिमी ऑफ द पीपल है, तो हिंदी, मेरी हिंदी और उर्दू बहुत उम्दा है, और अंग्रेजी ठीक ठीक है, मतलब समझ के लायक है, वो बहुत लिटरेरी नहीं है। तो वो जो नाटक है जिनके जिनकी बात मैं कर रही हूँ नाटककारों की, उनके नाटक तो समझना बहुत मुश्किल है। तब मिस प्रभु ने मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा, अर्चना बहुत अच्छे नाटक हैं और इनका अनुवाद और इनका पूरा का पूरा आपको एडेप्टेशन भी मिलेगा, यानी कि इनका रूपांतरण भी मिलेगा, और उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने फिर वो मुझे बुलाती थी, हम लोग बैठ के, अच्छा ये मोनोलॉग बोलो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारा तलफ्फुस अच्छा है, डिक्शन अच्छा है, यू कैन स्पीक, लाउड, लिटिल लाउड प्रोजेक्ट करिए आप अपने आप को, ऐसे ऐसे करते करते। और फिर 3 साल में बहुत एक्टिव रही वहां पर, नाटक जब जब होते थे उसमें मैं बहुत अच्छा बैक स्टेज और ऑन स्टेज होती थी, और इस तरीके से मेरी औपचारिक एक शिक्षा शुरू हुई, और यहां से मुझे नाटक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर मैं दिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही थी यूनिवर्सिटी से, उस जमाने में मुझे याद है शाम के समय में, ये एक तरह का मुझे एडिक्शन हो गया था तब तक कि चैन, एक नाटक खत्म हुआ, अब क्या, अब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, तो अब क्या करें, चलो फिर चलते हैं। उस जमाने में साहब रविंद्र मंच, क्या स्वर्णिम इतिहास हमारा रहा है, उस रविंद्र मंच पे हम जब तक शाम को ना जाएं तब तक हमारे को चैन नहीं आता था। तो हम लोग वहां जाया करते थे, रिहर्सल करते थे, सरताज माथुर साहब, डीएन शैली साहब, मुमताज शकीफ साहब, एस वासुदेव सिंह साहब, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के, नंदलाल शर्मा जी, खूब सारे लोग थे उस जमाने में जिन्होंने मुझे परिष्कृत किया और मेरे थिएटर के पैशन को, जुनून को आगे बढ़वाया। और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर बहुत बहुत तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, चलो करो करो करो। तो ये वो जब हम बड़े हो रहे होते हैं, और वैसे भी अगर हम एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी देखें या जवानों की साइकोलॉजी भी देखें, तो साहब ये होता है अगर थोड़ा सा कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो मनोबल दुगना हो जाता है, चाहे उतना है नहीं, लेकिन एक छोटी सी आपको कोई प्रेरणा देता है और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वो वक्त था, तो बस चलते चले गए। प्लान नहीं किया था, कभी प्लान नहीं किया लाइफ को कि मैं ये करूंगी या मैं थिएटर कोई अपना पैशन, जो मेरा पैशन है यही प्रोफेशन बनेगा, या मैं म्यूजिक में जाऊंगी। बस करती थी और उसका लुत्फ उठाती थी, मुझे बस सुकून बहुत चाहिए था और वो इनके जरिए मैंने पाया जिंदगी में।
1: मजा आ गया अर्चना जी, आपने तो एक तरह से जयपुर का या राजस्थान का इतिहास ही कर दिया। हेमलता प्रभु, मैडम तरवे, सरताज माथुर, एस वासुदेव, इनके नाम लेके तो आपने मजा कर दिया, बिल्कुल शुरुआत कर दी। तो ऐसा करते हैं, इतनी बड़ी हस्तियों के जब नाम लिए तो इनके लिए रुक के इनके लिए एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।
2: जी।

0: हाँ, तो वेलकम बैक अर्चना जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपकी जिंदगी के सफर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? किसी ने सजेस्ट किया आपको, या किस तरह से आपने सोचा कि मैं एनएसडी में पहुंचूं, क्या एडमिशन लो, कैसे हुआ आपके, ये सब कुछ बताइए। किस तरह जुड़ी आप एनएसडी से?
1: मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने कुछ मैंने तय भी नहीं किया, ना मैंने सोचा, और ना मुझे बहुत ज्यादा इल्म था कि ऐसा कोई संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम का।
0: अच्छा,
1: वाकई मैं बता रही हूँ, जमाने में जो मेरी मेरी अपनी नॉलेज थी वो बहुत ही लिमिटेड इस रूप में थी। इतना सा पता था कि दिल्ली में या पूना में कोई ऐसा संस्थान है कि जहां पर आपको रंगमंच की और फिल्मों की तालीम दी जाती है,
0: जी
1: दैट्स इट।
0: जी
1: मुझे
0: अच्छा,
1: कतई नहीं पता था ये कितना डिफिकल्ट है यहाँ आना, या इसमें दाखिल होना बहुत मुश्किल है। और उस जमाने में इसको इसको एक जमाने में इसका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स
0: इज इट? अच्छा,
1: जी, और
0: ओके।
1: बाद में इसका नाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रखा गया। तो इसमें उस जमाने में 20 एडमिशन होते थे ऑल ओवर एशिया से, जिसमें
0: अच्छा,
1: भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, निश्चित तौर पे भारत के विद्यार्थी ज्यादा होते थे, लेकिन क्योंकि ये एशिया का बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्थान है जो कि नाट्य की तालीम दिया करता है, तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर दाखिला। दरअसल हुआ ये कि मैंने मास्टर्स जब किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ ने फंड किया था इसको, और उसका नाम था विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला विकास कार्यक्रम, जिसको कि श्री अनिल बोर्डिया, श्रीमती अरुण, हाँ, श्रीमती अरुणा रॉय, मिसेस शारदा जैन, ममता जेटली, इन लोगों ने उस समय इसको स्थापित किया था राजस्थान में। और राजस्थान की महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर ये कल्पना की थी कि जो भी जितने भी हमारे विकासात्मक कार्यक्रम होते हैं उसमें अमूमन होता क्या है, जो ऊपर का स्तर है वो तो हर वक्त परिष्कृत होता है, उससे लाभ उठाता है, लेकिन जो ग्रास रूट है, जो हमारा ग्रामीण इलाका है, वो उससे अछूता रह जाता है। तो इस तरीके से जब मैंने एमए कर लिया तो एक साहब एक अखबार देखा और उसमें विशेषज्ञ के पद पर उनको लोग चाहिए थे, एक ही पोस्ट थी, हमने अप्लाई कर दिया और हमारा इत्तेफाकन उसमें हो गया। तो दिल्ली जब मैं गई सोशल वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में, तो एक बड़ी प्रतिष्ठित, बहुत ही काबिल अभिनेत्री, बहुत प्यारी अभिनेत्री मिली मुझे, जिनका नाम है, मराठी है वो, और सुहासिनी मुले। हाँ,
0: अरे अरे, भुवन सोम वाली में याद आ गए, भुवन
1: वो भी
0: सोम।
1: उसी में आई, जी, वो आई थी, और उनके साथ बहुत अच्छी मेरी चर्चा रही। जितने भी अभी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिसेफ को लेके और हमारे कार्य को लेके, उनके कार्य को लेके, और रंगमंच तो खैर उनके कमाल का एक है ही, इसके अलावा फिल्में बहुत खूबसूरत उन्होंने की हैं, लगान, हुत्तु
0: हाँ,
1: तू, भुवन शोम,
0: भुवन
1: तो
0: सोम।
1: बहुत ही जी। तो उन्होंने, उनसे ऐसी चर्चा के दौरान पता चला, उनसे तुम और क्या करती हो, तुम्हारे और क्या शौक है, तो हमने कहा थिएटर, म्यूजिक। अरे थिएटर है, अच्छा क्या करती हो, मैंने कहा अभिनय करते हैं और तो कुछ आता नहीं है, तो अच्छा, तुम अभिनय करती हो तो क्यों, तुम एनएसडी जाओ ना, मैंने कहा वो क्या है, बोले ऐसे ऐसे है, इस तरह का एक संस्थान है आप, और इस तरीके से आप जाके घूम के आइए। तो मैं गई, उस समय मेरे पास, मेरे साथ एक साथिन भी गई हुई थी दिल्ली उस मीटिंग में, उसका
0: ओके
1: नाम
0: ओके
1: था मोहिनी। मोहिनी वो साथिन है, जब क्लिंटन आए थे हमारे राजस्थान में, तो आपको अगर याद आता हो वो गांव कौन सा था जहां से कंप्यूटर ऑन हुआ था,
0: ये कहीं आगरा रोड पे शायद कोई गांव था, मुझे अब
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: याद
1: जी
0: नहीं।
1: जी
0: आगरा रोड
1: नायला,
0: पे,
1: नायला, नायला, नायला,
0: नायला
1: नायला,
0: नायला नायला नायला, बिल्कुल।
1: वो नायला की साथिन थी मेरे साथ उस
0: ओके
1: वक्त,
0: ओके
1: और
0: ओके
1: मैं और मोहिनी हम लोग चल पड़े साहब एनएसजी मंडी हाउस, और उस समय वहां पर छुट्टियां चल रही थी ग्रीष्मकालीन, और देखा वहां अंदर जाके तो हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब बैठे थे।
0: ओके ओके
1: मैं गई बड़े उससे और उनसे बात बात की, उन्हें बताया मैं कौन हूं और मैं क्यों आई हूं। मैंने कहा, बोले अच्छा आप यहाँ प्रवेश लेना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं सर, प्रवेश नहीं लेना चाहती हूँ, सुहासिनी जी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि तुम घूम के आओ तो मैं देखने आई हूँ, हाँ प्लीज प्लीज। फिर उन्होंने पूरा मुझे एनएसडी के बारे में समझाया और तमाम जो पोस्टर्स लगे थे उसके बारे में तफसील से बताया। 3-4 घंटे हम लोग वहां रहे, बहुत अच्छा वक्त था। हम वापस आए उस मीटिंग से, जयपुर आ गए। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस आता था घर पर, तो माँ ने एक दिन बताया कि अरे तुम यहीं गई थी ना, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का देखो एडमिशन नोटिस आया है। मैंने कहा क्या, तो मैं क्या करूं? बोले व्हाई डोंट यू अप्लाई, अप्लाई करिए आप। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा नहीं होना है, आपको पता है क्या लिखा है, 20 सीट्स है पूरे एशिया में और उसमें, तो बोलती है तुमने क्या सोच। मैंने कहा और उसमें मुझे कोई नहीं लेगा, मैं तो कुएं की मेंढक हूँ, अपने शौक को पूरा करती हूँ, 2-4 नाटक कर लिए तो मेरा एनएसजी में सिलेक्शन हो जाएगा, तुमने क्या सोचा है माँ? तो बोले नहीं नहीं तुमने सोच लिया ना, नहीं होगा। मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम जाओगी अप्लाई करोगी और फेल होके आ जाओ बेशक, लेकिन तुम जाओगी। साहब उनके बाप, उनकी आवाज में उनके मतलब क्या कन्विक्शन था, मैं मजबूर हो गई, मैंने अप्लाई कर दिया जबकि मेरा कतई इरादा नहीं था। और मैं गई और उस हमारे ही बैच से यहाँ का जो प्रवेश का पूरा एक सिस्टम था वो चेंज हुआ था, यानी कि पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा ऑडिशन हुआ, फिर दो दो किताबों पे हमसे चर्चा की गई डिटेल में, उस किताब की पूरी बातचीत की गई कि उसमें कौन कैरेक्टर है, क्या लिखा गया है, रेफरेंस बुक्स आती थी बहुत सारी, नाटक आते थे, लिस्ट आती थी वहां से, उस पर खूब अच्छा सा हमारा डिस्कशन हुआ है फैकल्टी के साथ जो इंटरव्यू ले रहे थे, इसमें हम पास हो गए। उसके बाद हमारी 4 दिन की वर्कशॉप, जो जो लोग इसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उसमें भी हम पास हो गए, दूसरे फेज में भी, और पता चला कि हमारा सिलेक्शन हो गया।
0: अरे वाह, अच्छा।
1: और हमें मतलब ऐसा लगा ये हुआ क्या है, ये मैं तो खेलने गई थी, वाकई मैं खेलने गई थी। मैंने कहा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, टर्निंग
0: मजा
1: पॉइंट था
0: मजा आ
1: मेरा।
0: गया, मजा आ गया अर्चना जी। ये तो आपने, अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे ये बताइए कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एनएसजी, जो युवा कलाकार चाहते हैं कि हम एनएसजी में एडमिशन लें, ये अल्टीमेट है, ये है, तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताइए कि एनएसजी में ऐसी खास बात है क्या जो हमारे स्टेज को और थिएटर के लोग को उसमें जाने का सपना देखते हैं।
1: थोड़ा सा दौर बदला है हमारा दौर, मैं ये नहीं कह रही आज का दौर खराब है या पहले का दौर अच्छा था, मैं सिर्फ इतना सा आपको अर्ज करूंगी कि हमारे जितने भी, अभी आपने नाम लिए, आपने काफी सारे लोग थे जिन्होंने हमें परिष्कृत किया, मैंने इन लोगों से सीखा है, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और उस जमाने में कोई टेक्निक नहीं थी इस तरह की जो आज के तारीख में आपके पास तमाम तरह की टेक्निक्स है थिएटर में। यहाँ यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति होते थे हमारे, जिसको हम प्रोफेसर कहते हैं, गुरु कहते हैं, और उन्होंने हमको, जैसे हम कच्ची मिट्टी थे और हमको उन्होंने एक आकार दिया है, तो ये तो खासियत हमारे दौर की है। और हमने बिल्कुल मैनुअल सारा काम किया है सब, कारपेंट्री का भी काम किया उस जमाने में, मॉडल मेकिंग भी किया, लाइट डिजाइन भी किया, क्योंकि मैंने डिजाइन और डायरेक्शन में विशेषज्ञता हासिल की वहां से, तो ये सब भी किया। लेकिन हम इस मामले में किस्मत वाले रहे कि हमें नसीरुद्दीन शाह साहब आए, चाहे भास्कर चंद्रावरकर आए, या जर्मनी से एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर आए थे, बहुत अच्छे, कॉनराड कॉनराड जीडरिच, तो उनकी क्लासेस भी हमको मिला करती थी, हम उसमें भी होते थे, क्योंकि हमें ये बताया था कि अगर आप ये समझेंगे तभी तो आप एक्टर को डील करेंगे, तो आपको बेसिक एक्टिंग की चीजें भी पता होनी चाहिए, तो वो भी हमने प्राप्त की ये जितनी भी तालीम थी। तो मैं ये कह रही हूँ आज की तारीख में भी अगर हम एनएसजी की बात करते हैं और बच्चे जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए, वो एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें आपको दिन रात सिर्फ और सिर्फ थिएटर पर ही फोकस करना है। आपको उस वो माहौल, वो संसाधन, वो पूरा एनवायरनमेंट जो आपको वहां का मिलता है, और वहीं रहना है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो एक मौका मिलता है। ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, वो अगर फोकस करेगा अपने ऊपर और काम करेगा, तो वो कहीं पर भी रहेगा वो उम्दा ही करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका एनएसजी में नहीं होता है, तो बैरी जॉन साहब के साथ उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया अभी वहां पर मुंबई में, अनुपम खेर साहब जिनका एक्टर्स प्रिपेयर है, सुभाष गई साहब का जो विस्लिंग वुड्स है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अब बन गए हैं जहां पर बच्चे सीख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कितना शिद्दत रखता है। स्टूडेंट तो सब एक से हैं, लेकिन आपकी शिद्दत ही आपकी कामयाबी का रास्ता पक्का
0: बिल्कुल
1: करती है।
0: सही। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, और ये आपने सही बताया, उस जमाने में तो आपकी जो ट्रेनिंग थी, आपका जो भी वहाँ का प्रोसेस था वो डिफरेंट था, और आजकल तो टेक्निक भी आ गई है और सब चीजें आ गई। तो चलिए इसी दौर और इस दौर के नाम पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी जरूर।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी। अब
1: जी
0: आपकी अपने जैसे आपने अभी नाम जिक्र किया, बैरी जॉन्स आपका, नसुद्दीन शाह साहब का, तो आपने इन सब लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ है, बी.वी. कारंत, राम गोपाल बजाज, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया, इनसे आपको क्या महसूस हुआ और क्या इनके साथ अनुभव कैसे रहा आपका और क्या क्या सीखा आपने इनसे, कुछ इसके बारे में।

0: रंगमंच को इस तरीके से प्रश्रय दिया, फिर उसके बाद इतनी इतनी सदी में वो आया, अरे साहब कमाल। और आज भी अंकुर साहब जैसा तो एनसाइक्लोपीडिया विरला ही होगा शायद कोई।
1: ओह, इसका मतलब है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी वहां मिलता रहा, इसका
0: जी
1: जिस तरह से आप बता रही हैं। तो
0: जी
1: अगर
0: जी
1: एक कुछ शब्दों में अगर आप बयान करना चाहते हैं, तो इतने गुरुओं से, एनएसटी के गुरुओं से, आपको कोई एक ऐसी एक या दो खास बात बताइए जो आपको लगा कि आपने सीखी और बाद में आपकी जो रंगमंच की यात्रा रही उसमें वो काम आई। कोई एक दो टिप ऐसे कुछ मिले जो आपको हमेशा जिंदगी में लगा कि अरे देखो ये चीज मैंने वहां सोची, ऐसी कुछ बात है?
0: बातें तो वही हैं जो शायद माता पिता ने भी सिखाई थी, और वही बातें वहां दोहराई गई। और मुझे लगता है उस जमाने में इन्हीं बातों पर बहुत जोर था कि आप जो हो वही रहो, एक तो ये, कुछ और बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि यदि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप से हट जाओगे तो आप नहीं रहोगे, और जब आप नहीं रहोगे तो कुछ बनने के चक्कर में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये है कि आप रहो, एक तो ये सीखा। और साथ साथ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास कि कभी कभी दूसरों दूसरे का जीवन भी जी के देखो, तभी आप अभिनय कर पाओगे, है ना। तो ये भी मजेदार बात है कि अगर, जो कि हमारी माँ भी हमको कहा करती थी कि बेटा सहानुभूति नहीं समानुभूति रखो दूसरे के साथ, कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा क्या होता। अगर हम ये कहते हैं अरे कितना गरीब आदमी है बेचारा, बारिश में भीग रहा है, इसके पास कपड़े नहीं है, तो आप ये नहीं, सहानुभूति नहीं बेचारा, ये ना ना ना उसको फील करो, और उसको फील करो, और इतनी फील, इतना फील करो कि तुम्हें लगे कि वो मैं हूं, वो जो भिखारी है सामने जिसको जरूरत है शरण की। इस तरीके से हमारा मतलब कुल मिला के बचपन, एनएसडी, कॉलेज, और फिर बाद में मेरा ये प्रोफेशन, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपस में इस कदर एकम एक है साहब कि इसको मैं अलग नहीं कर पाती हूँ, वही चीजें हैं, वही है।
1: मदर की जो सीख थी एम्पैथी वाली, एम्पैथी होनी चाहिए इंसान के अंदर सिंपैथी की जगह, तो बहुत ही बढ़िया बात है और वही जिंदगी में आपके साथ चलती रही ऐसा लगता है।
0: जी
1: चलिए
0: जी
1: चलिए, तो माँ की सीख के नाम पे हम रुक के गाना सुनते हैं और फिर आपकी जो नाट्य यात्रा है उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी. अब आपने कोर्ट मार्शल, नटी बिनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक सिंह बताए ये आपने, और इन सब चर्चित नाटकों में काम किया है. तो इनमें से कुछ बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट या इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो आपके बहुत ही दिल के करीब है और आपके मन में इच्छा होती है कि अरे मौका मिले तो इसको एक बार दोबारा किया जाए. ऐसा कोई किसी नाटक के बारे में क्या क्या विचार है आप?
1: इसमें कुछ नाटक के नाम छूट गए जो कि मेरा बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है।
0: जी,
1: एक रांगे राघव साहब की कहानी है गदल
0: गदल. अच्छा.
1: जी, वो भी मैंने डायरेक्ट की है और वो बहुत खूबसूरत कहानी है। एक औरत की जिद की और उसकी जुझारूपन की बहुत खूबसूरत कहानी है। तो मैं उसको दोबारा से अब करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इतनी जिंदगी जी ली है और जब मैंने किया था तब ये मैं मात्र 30 साल की, ना 26 साल की थी, और
0: ओके.
1: अब मैं बिल्कुल उससे आगे आ चुकी हूँ। तो मैं गदल करना चाहूंगी निश्चित तौर पे। नटी बिनोदिनी भी बहुत खूबसूरत नाटक है क्योंकि नटी बिनोदिनी तो एक सच्ची कहानी है और बंगाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री की कहानी है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस की शरण में चली जाती है। ये तमाम जो रंगमंच का कारोबार है वो देखती है और उसका दिल दुखता है किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे उसका नाम हटाया गया। तो वो बहुत उससे दुखी होके और एक तरीके से पूरा संन्यास सा ले लेती है जिंदगी से और चली जाती है। तो वो भी खूबसूरत नाटक देखिए, सारे बहुत खूबसूरत लिखे गए हैं। और अभी की जो परिकल्पना अब मैं कर पाती हूँ वो जो उस समय मैंने कमियां रखी होंगी।

0: का आपको कहीं बताया अभी, तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी अभी कुछ साल पहले,
1: जी
0: तो एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए आई,
1: ओके
0: ठीक है, उसका एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बाद में उसने पीएचडी भी की और अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब वो पढ़ रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी ड्रामा डिपार्टमेंट से, और उसका जब प्ले था, पहली दफा उसके पेरेंट्स डिपार्टमेंट में आए और उसके जो फादर थे उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा आपने तो रविंद्र मंच पे नाटक किया था एक जमाने में। मैंने कहा जी मैं रविंद्र मंच पे किया करती थी निश्चित तौर पे, आपने कौन सा नाटक, और उन्हें पूरा याद था। उन्होंने कहा कि आपने धनिया की भूमिका की थी, और वो
1: अरे
0: जो भूमिका की छाप है वो आज तक मेरे दिमाग से हटी नहीं है, और मैडम आपने बहुत खूबसूरत अभिनय किया था। मुझे लगा कि वाकई में कहीं तो शिद्दत रही होगी शायद, और वाकई में वो इतना खूबसूरत नाटक था और वो इतना खूबसूरत खूबसूरत किरदार था जो कि सरताज जी ने मुझसे करवा दिया। तो वो एक तो मेरी ये कमिटी याद है। इसके अलावा कुछ साल पहले कुछ हमारी

0: इतनी बेवफाई पे दिल उसको प्यार करता है, इलाही वो सितमगर बा वफा होता तो क्या होता। तो ये उसके अल्फाज, और वो बहुत इतनी ज्यादा वो इमोशनल हो रही थी, पुरानी यादें ताजा कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि आप प्लीज आप एक्टिंग किया करो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, आप सिर्फ पढ़ाती हो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा देखिए कभी करेंगे, भविष्य में चिंता ना करें। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल होकर मुझसे मिलते हैं और बहुत ही दिल से मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे यही मेरा परिवार है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो एक वो फीलिंग है वो हर तरफ मुझे फील
1: बिल्कुल
0: होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही बात। देखिए, दिल को दिल से रहा रहती है। मैं आपसे अगली बात यही था कि आप अपने किरदार में से कोई एक हमें अच्छा सा डायलॉग या कोई ऐसा चीज सुनाए तो मजा आ जाएगा, और आपने एक एक कविता भी सुना दी। तो इनफैक्ट मेरा तो थोड़ा लालच और बढ़ गया है। तो कुछ और सुनाना चाहें अपनी किसी यादगार लाइंस को आप, तो प्लीज सुनाइए। क्योंकि मुझे भी याद है पुराने, जब हम रविंद्र रंगमंच पे, मैं भी और सरताज माथुर साहब का तो मैं भी बहुत बड़ा बड़ा फैन हूँ। रक्त बीज है, एवं इंद्रजीत है, कुछ नाटक याद है मुझे पुराने जो हम देखा करते थे। एवं एवं इंद्रजीत था, एक बादल सरकार का था, ये कुछ याद है। तो चलिए, इन्हीं यादों के नाम पे रुक के एक गाना सुनते हैं, और फिर थोड़ी सी अपन करीब करीब बकौल अमीन से यानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, तो एक दो बातें और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ वेलकम बैक अर्चना जी. आप,
1: थैंक यू।
0: हालांकि ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता होगा कि अगर अभी भी आपको स्टेज पे दोबारा आप जब जाती होंगी कभी भी आप एक्टिंग करने के लिए या वैसे ही, तो कैसा अंदर से क्या कोई एक्साइटमेंट महसूस होता है या क्या एंजाइटी होती है, क्या किस तरह के इमोशंस आते हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आपको कैसा लगता है स्टेज पर दोबारा जाने से?
1: एंग्जाइटी तो होती है कि मैं हर बार नई हूं। जो जो मैंने किया अभी तक वो कल की बात थी, अभी के पल में मैं क्या हूं और मैं किस तरीके से उस किरदार को प्रस्तुत करूंगी सबके सामने, तो इस बात की चिंता भी करती हूँ। और एक एक्टर के लिए बहुत ही जरूरी ये टॉनिक है कि वो थोड़ा सा नर्वस भी रहे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा चल पाता है, तो सम पे रहना पड़ता है। और उस सम पे आने से पहले हर एक जो भी अच्छा कैरेक्टर जीना है अगर आपको बतौर कलाकार, तो वो बहुत सारी चीजों से

0: गुजरना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़े से काप कंपन होता है शरीर में, थोड़ी आवाज लरसती है, लेकिन और जैसे ही उस उसमें सुर में आते हैं साहब, फिर वहां बस सेट हो जाता है सारा कुछ। तो
1: बिल्कुल
0: ये जैसे जैसे आप ये देख लीजिए, जो गाने वाले हैं, संगीत के लोग हैं, वो भी इससे गुजरते हैं। जब पहली दफा स्टेज पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती होगी। क्योंकि मैं शास्त्रीय गायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम होता है, जो बहुत पक्के रियाजी हैं उनको शायद ना होता होगा, लेकिन जो हम जैसे कच्चे लोग हैं और जो अभी सीख ही रहे हैं, तो हम मैं तो अभी भी रंगमंच की विद्यार्थी हूँ, मैंने तालीम ली है और उसको परिष्कृत करना है, अभी और आगे जाना है, सीख रहे हैं तो विद्यार्थी ही रहेंगे। तो अभी भी होता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस भी आता है धीरे धीरे करते करते।
1: जी, बिल्कुल सही बात।
0: और पुरानी यादें खींचती हैं, पुराना तमाम एक तरह से चित्र चलता है, रील चलती है, कैसे हमने अपना शुरुआत की थी, कैसे हम आए, कैसे हम वहां चले, और बड़ी तेजी से वक्त गुजरा है, ये भी नजर आता है, सब
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: सही,
0: गुजर गया।
1: सब कुछ चलिए। कितनी अच्छी हम एक बातों को याद कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए अर्चना जी, मान लो आप थिएटर में नहीं होती, जब थिएटर में नहीं होती है तो आप अपना समय वक्त कैसे बिताना पसंद करती है? एक तो ये भी बताइए कि अगर थिएटर आर्टिस्ट नहीं होती अर्चना तो क्या बनती, क्या बनना चाहती थी या क्या बन सकती थी? और दूसरा है कि जब आप थिएटर नहीं कर रही होती है तो आप अपना वक्त कैसे गुजारती है, समय बिताना पसंद कैसे करती है, आपका पास टाइम क्या है सबसे अच्छा?
0: सबसे अच्छा मेरा म्यूजिक है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ बहुत, और मुझे बहुत सारे जो गजल गजल गायक हैं उनको सुनना अच्छा लगता है। जग्गी साहब हैं, गुलाम अली हैं, सरीदा खानम है, बेगम साहिबा, बेगम अख्तर हैं, उनको सुना करती हूँ, एक अलग ही अलग मिजाज है। उसके अलावा और भी मुझे पुराने फिल्मी गाने बहुत पसंद है, वो सुना करती हूँ। थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी हूँ तो आध्यात्मिक जो बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब सुना करती हूँ। और साथ साथ मेरा सबसे बड़ा पैशन है पढ़ना, मुझे लिटरेचर और तमाम चीजें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा खाली टाइम तो इसी में जाता है। वैसे तो मुझे खाली टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी इस रूप में मसरूफ है, मैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीती हूँ, शिद्दत से जीती हूँ, और मुझे मिलना मिलाना, लोगों से बात करना, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाती हूँ, कुछ लोगों की मदद भी करती हूँ,
1: जी
0: वहां जाके बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो ये मेरा वक्त है, और कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप हैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, सोशल ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़ी हूँ, तो जहाँ जो भी काम होता है वहां चली जाती हूँ, घर पर आ जाते हैं लोग, तो कुल मिला के जिंदगी जीती हूँ। और अगर
1: बिल्कुल
0: मैं नाटक में नहीं होती तो भी मैं अर्चना ही होती, और जो भी अच्छा लगता वो करती, क्योंकि मैंने जिंदगी को प्लान ही नहीं किया, कभी नहीं प्लान किया साहब, ना मैंने नाटक में जाने का प्लान किया था, ये तो जिंदगी है मेरी, तो जिंदगी जी रहे हैं।
1: बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा अगर अर्चना जी मैं ये गुस्ताखी करूं कि आपसे कहूं कि एक कोई अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन सुनाए तो आप चाहेंगी सुनाना, अगर आप कंफर्टेबल हो?
0: बहुत
1: ऑफ कोर्स।
0: सुर सुर बहुत भटके हुए हैं
1: अरे
0: मेरे
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिल से गाएंगी तो
0: फिर
1: सुर अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगे।
0: हम जिन गानों को सुनकर प्रेरित हुए बचपन से, और जिन जो गाने आज भी मेरी जिंदगी का आधार है, मैं एक गान एक उस उन्हीं में से एक गाने की कुछ लाइन मैं आपको सुनाती
1: जी
0: हूँ। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से

0: निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, हो धारा चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो बस आप चलते रहे चलते
1: बस
0: रहे चलते
1: बस
0: रहे, जब तक सांस है जब तक चलते रहे और चलते रहे,
1: क्या
0: तो
1: क्या
0: चलना
1: बढ़िया,
0: होगा।
1: क्या बढ़िया नोट पे आपने, म्यूजिकल नोट पे अपनी बात हर तरह से कह दी, अपने जिंदगी का सफर बयान कर दिया। अभी बस मैं एक आखिरी बात पूछूं, अगर इसी से रिलेटेड, कि
0: जी
1: आपको अपने पूरे रंगमंचीय जीवन को यदि एक वाक्य में समेटना हो तो वो वाक्य क्या होगा? क्या यही जो अभी हम कह रहे थे,
0: जी तुझको चलना
1: तुझको
0: होगा,
1: चलना होगा? देखिए क्या क्या क्या मजा आ गया ना बात के। चलिए
0: क्योंकि
1: बहुत बढ़िया।
0: रंगमंच कि रंगमंच जीवन का ही तो अक्स है, और जब हम जीवन में नहीं रुकेंगे तो रंगमंच में भी नहीं रुकेंगे, और चलता चलेगा कारवां, चलता चलेगा पूरा सिलसिला, कभी ना रुकेंगे। हम जो भी जहां भी कर रहे हैं, ना सिर्फ रंगमंच कलाएं, जो भी हम जिस भी रूप में हम कहीं अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, कभी भी हौसला ना खोए, और निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, और यही हमें परिष्कृत करेंगे। संघर्ष ही हमारा, मुझे लगता है, साथी है,
1: जी
0: तो इससे कभी घबराए नहीं, और चलते रहे चलना होगा, चलते रहे चलना होगा।
1: तो अर्चना जी, आज की इस बातचीत में हमने आपके जीवन के अनेक रंग देखे, एक बेटी, एक विद्यार्थी, एक कलाकार, एक निर्देशक, एक शिक्षिका, और सबसे बढ़कर रंगमंच की एक समर्पित साधिका के रूप में। एनएसजी के विद्यार्थी से लेकर विश्वविद्यालय की डीन बनने तक का सफर, देश के महान रंगकर्मियों के साथ काम करने का अनुभव, और अनगिनत विद्यार्थियों को दिशा देने का आपका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है। मुझे फैज साहब का एक मिसरा याद आ रहा है, और भी बहुत दुख है दुनिया में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा। रंगमंच शायद उन्हीं राहों में से एक है जो हमें अपने समय, अपने समाज और अपने भीतर के इंसान से जोड़ता है। अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये काम किया, रेडियो एसएन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया। आपने अपने जीवन को इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हम कामना करते हैं आपकी सृजन यात्रा यूं ही नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, और रंगमंच के प्रति आपका यह समर्पण आने वाले वर्षों में भी अनेक कलाकारों के लिए प्रकाश स्तंभ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, और सभी सुनने वाले मेरे श्रोताओं को खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ में। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं हम। उनमें से उन लोगों को चुनते हैं जो या तो बहुत प्रतिभावान होते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, या जिन्होंने बहुत सारे अनुभव बटोरे हुए होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो फेल हुए होंगे, पास हुए होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे। तो आइए दोस्तों, आपको आज बता रहा हूं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना हुआ होगा। इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। जी हां, ये वही इटली के महान कलाकार थे। बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके अंदर क्या क्या काबिलियत नहीं थी दोस्तों, वो सुनिए। ये वास्तुशिल्पी थे, ये इंजीनियर थे, एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे। तो चलिए मान लिया कि टेक्निकली यानी कि तकनीकी तौर पर बहुत प्रभुत्व थे। साथ ही साथ ये कविता बहुत अच्छी लिखते थे, ये गाना बहुत अच्छा गाते थे, ये संगीत बहुत अच्छा बनाते थे, ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, ये मूर्तियां बहुत अच्छी गढ़ते थे, ये बहुत ही अच्छे खान सामा थे, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते थे। तो मजेदार वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं बिल्कुल होती हैं दोस्तों। कभी आप अपने अंदर की प्रतिभा को भी जरा खोज के तो देखिए। तो इन्होंने कहा था, जो भी व्यक्ति काम करने के तरीके या उसकी थ्योरी को समझे बिना ही बस शुरू हो जाता है, काम को करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे नाविक जिसे मालूम ही नहीं कि जाना किस दिशा में है और बस नाव लेके चल दे। लियोनार्डो दा विंची का कहना है कि यदि आप पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी, यानी कि आपका दिमाग तरोताजा रहेगा जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं। और ये बात तो है दोस्तों, हम लोग अक्सर कुछ भी सीखना बंद कर देते हैं, हमें लगने लगता है हमें तो सब कुछ आता है। असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीजों को अगर हम समझना शुरू कर दें तो मजा आ जाए। इंसान को सबसे बड़ा धोखा अपने गलत विचारों से मिलता है, किसी और से नहीं। एक समझदार व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की ही ख्वाहिश रखता है और किसी चीज की नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान मिल जाए तो सब चीजें अपने आप चली आती हैं। सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना भी सीखे। इसी तरह से काम करने की इच्छा शक्ति होना भी काफी नहीं है, काम करके दिखाइए भी तो। एक अच्छी तरह से बिताया हुआ दिन सुखद नींद लेकर आता है। अगर आपने कुछ ना कुछ किसी दिन सीखा है तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग बहुत संतुष्ट होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। जो गुणों के बीज बोता है वही जीवन में आगे चलकर सम्मान की फसल काटता है। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी होती है। अंत की तुलना में शुरुआत में विरोध करना बहुत आसान होता है। आप किसी चीज के आखिरी में पहुंच जाए और फिर उसकी तुलना करें, ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों। तो जो आप नहीं समझते हैं यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि आप उस चीज को जानते ही नहीं तो प्रशंसा भी नहीं कर सकते और बुराई भी नहीं कर सकते दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: डॉक्टर ने पूछा, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो बे? गप्पू ने कहा, डॉक्टर साहब आप ही ने तो लिख रखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

देखिए भाई, माफ करने से गुस्से, दर्द और दुख की वो श्रृंखला, वो सीरीज टूट जाती है जो हमारी डेवलपमेंट में, हमारे विकास में बाधक बनी हुई होती है। माफ कर दीजिए, हमें जिंदगी की ओर ले चलिए। माफ करने से ना हम आजाद हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं और आगे के लिए बेहतर चुनाव कर पाते हैं। इसलिए हम गुस्से और बदलाव की भावना से सुलगते रहते हैं, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। भाई, दूसरों को माफ कर देना अपने आप को आजाद करना होता है। इससे दूसरा आजाद नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार कमजोर और फीका तो कई दफा मजबूत और रोशनी से लबालब चांद समझता है मनुष्य होने का मतलब। जीवन यात्रा में आए दिन तमाम तरह की उठापटक होती ही रहती है, या कुछ समय के लिए कदम पीछे कर लेना हमेशा मंजिल से दूर नहीं करता हमें। लंबी यात्राओं में देखिए, हर पड़ाव जरूरी होता है। गति का महत्व है तो ठहराव का भी उतना ही महत्व है। इसलिए रुकिए, सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। सपनों के सच होने की संभावना ही जीवन को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए उम्मीदों का होना, जिंदगी की धूप में घनी छाया का होना, जिसके साय में बढ़ते रहना आसान होता है। अगर कुछ देखिए होने की, बदलने की उम्मीद ही ना हो तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। कुछ करने का जज्बा उम्मीद के सहारे ही जोर पकड़ता है। हमारा भविष्य हमारी उम्मीदों से आकार लेता है। इसलिए उम्मीद हमेशा बनाए रखें, लेकिन ख्याल रखें, उम्मीदों से बंधना भी बहुत खतरनाक होता है।

सब पुस्तकें, संसार की सारी पुस्तकें नहीं देती तुम्हें कोई खुशी, लेकिन वो सिखाती हैं रहस्य खुद में लौट जाने का। वहां है वो सब जो तुम्हें चाहिए, सूरज, तारे और चांद, क्योंकि प्रकाश जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे अंदर बसता है। बुद्धि जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे हो पुस्तकालयों में, आभा जो हर पन्ने से निकलती है, अभी के लिए वो तुम्हारी ही है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वीरू बोला, भैया सुना है शादियां आसमान में तय होती हैं।
2: जय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि तूफान और बिजली भी आसमान से ही कड़कती है।
3: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
4: फिर कब मिलोगे?
3: जब तुम कहोगे।
4: तुम्हें रात को?
3: हाँ, आधी रात को।
4: कहाँ?

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार? रेडियो के साथ सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। थका मैं, हारा मैं, गिरा मैं, कदमों की आदत ये कब रही, इस तरह काटे रास्ते मैंने, मंजिलों की मेरी तलब रही। तुम्हें तो सिर्फ वो काला लैपटॉप का बैग नजर आता है, वो कंधों पे रोज न जाने क्या क्या दफ्तर ले जाता है। हर शख्स शहर में यहां अजनबी सा लगे, और मेरे गांव का वो बूढ़ा पेड़ भी मेरे यार सा है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, सफलता की चाबी सवेरे उठने में है, और अगर चाबी ना मिले तो फिर सो जाओ।

0: तो दोस्तों इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याबिल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
5: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए के उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्यादुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मैनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
6: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्लो सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था, काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है, जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया, वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गठ्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गठ्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। شوارٹز سکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا، میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا۔ سن 1950 میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا۔ جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے۔ کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا، کم سے کم 1,000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ اس وقت میری اکا میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا۔ مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں بسیج گیا۔ ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزہ آیا، وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھا، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا۔ ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا، پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر کے اے وی پنڈلے، پروفیسر نرسنگھا راؤ۔ پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمکس سکھاتے تھے، ایرونوٹیکل

इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर के ए वी पंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट्स से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने दो मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाओ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्र कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टोरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं।
بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی، جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی۔ اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے، اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی۔ بنگلور میں رہ کر میں رامیشورن کے سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا۔ پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا، ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ نندی اس کا نام رکھا گیا، شیو کی سواری کے آدھار پر۔ اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پروفیسر ایم جی کے مینن، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ڈائریکٹر، ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑتال کو آ پہنچے۔ نندی کا ذکر نکلا، مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک 10 منٹ کی اڑان کے لیے۔ اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے، مجھے انکوسپار سے بلاوا آ گیا، دی انڈین کمیٹی فار اسپیس ریسرچ۔ میں ممبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے۔ میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے، جو اس وقت ایٹومک انرجی کمیشن کے ڈپیوٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے۔ ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل موہ لیا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چن لیا گیا۔ مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینا حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں، جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے، جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سبارڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی، پابندی اور سختی، سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپاچی۔ نائکی اپاچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے ایک خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خوشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا، جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹ اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے، 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد۔ وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی۔
कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेवारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सुमीठा होए, थुम्बा में दो रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहनी दूसरा मैंने कहा। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन V.S. नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए दो अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साल प्रोग्राम तैयार हुआ जिसके पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साल प्रोग्राम तैयार हुआ जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रूमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। ये मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर M.G.K. मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोहतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी मोहतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो गए। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें, और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तखलीक की तरह SLV-3 की तखलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वर में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, न अखबारों ने स्याह हाशिए दिए, न सियासतदान थे वो, न विद्वान कोई, न कोई बड़े सरमायादार। एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे।
SLV-3 अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना

0: آنا ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی۔ یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں۔ اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی، 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا۔ ہم نے SLV3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا۔ 23 میٹر لمبا، 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے۔ ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی۔ دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی۔ میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا۔ اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا بالکل، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا۔ میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی۔ ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے۔ میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا۔ اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں۔ SLV3 کی ناکامیابی کی ذمہ واری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی، اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے، سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان براون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا، زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔ چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए।
1: मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। 4th stage कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
0: मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर साराभाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा व दर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाव रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला।

ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है। गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा, जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, दो चार बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटरवालू ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '90 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है?

0: 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो हम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
1: दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टंटाविल 90.8 FM छाबों की आवाज, RJ भावना के साथ। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी RJ प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियाँ, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वह अपनी कृषि में नवीनता लाए और प्रकृति में और पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को भली भांति समझे और अपनी कृषि में इस बदलती प्रकृति के अनुरूप कृषि करे। साथ ही हम यह प्रयास करते हैं कि आप तक उन्नत बीजों को आप तक पहुंचाया जा सके, साथ ही जो नवीनतम कृषि पद्धतियां हैं वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो केवीकी के माध्यम से, जो केवीकी के जो एक्सपर्ट है उनके माध्यम से आप तक भिन्न भिन्न फसलों के एक्सपर्ट को आप तक, उनके विचारों को आप तक पहुँचाए, साथ ही आपकी समस्या को आप एक्सपर्ट को आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और आपके खेतों में जो समस्याएं आ रही है उससे हम निदान भी पा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मौसम आधारित खेती के ऊपर। हमारा जो मौसम है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें कौन सी फसल हमें करनी चाहिए, किस फसल में हमें मुनाफा हो सकता है, साथ ही इन फसलों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: बात करने वाले हैं मॉनसून और खेती की। जी हाँ, मॉनसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मॉनसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे।
7: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर मानसून के ऊपर, क्योंकि जो हम कृषि करने वाले हैं इसमें मानसून की अहम भूमिका रहती है। बहुत सारे किसान हैं जो मानसून आधारित खेती करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इस साल का मानसून कैसा होने वाला है, सारी चीजों को हम जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं।

0: भारत में मॉनसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मॉनसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मॉनसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मॉनसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घावधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिये मानसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
2: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल, जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25
2: के बाद जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रिडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
3: देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
4: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो है प्रबंधन करना चाहिए फसलों में। जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैंने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसूनी वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अनंत जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है जितने जो जरूरत होती है फसलों को, उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान

0: इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमनी जी से। जनमनी जी, जैसा कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए। लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
1: देखिए, मैं इसका ना जो डिस्कशन है, दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है, जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो, लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है, एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है, टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफेड एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है, उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है भी, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ, फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है। तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा, कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है, कौन सा यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है। इसीलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है, उसका इस्तेमाल करें
0: जी। यानी जरा मनी जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए, ताकि आगे भी काम आए।
1: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके, नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
0: जी जी।
1: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
0: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं?
2: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है, और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे। यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
0: जी,
2: है।
0: लेकिन जी जी जी सर,
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं, बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
0: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
2: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
0: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालने हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
2: नहीं, समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नई बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
0: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
3: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए। उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपकी बीमारियां आ रही है उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे ही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा और धुल के जो है ये आपका
0: मिट्टी को भी
3: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
0: प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा।
3: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा और आपके जो जलीय जंतु है वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
0: बिल्कुल देखिए, यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं है मॉनसून और खेती की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, किसान
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टाइंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मानसून की खेती के ऊपर। तो आइए जानते हैं किस तरीके से मानसून की खेती में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आती है और इसके हिसाब से हमें कौन से कदम आगे उठाने चाहिए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
1: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। सो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है, एक है एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है, जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, वो एक SMS जाता है उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है डेली हम लोग भेज, भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, वो सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जी का केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहाँ संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नाव कास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक्स
0: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
1: बिहार में
0: जान भी गई,
1: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में।
0: जी, और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
2: हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे क्षेत्र हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायोफर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या
0: हमारा
2: गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफको जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन और पर्णीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
0: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
2: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
0: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिस जो पहले नहीं होती है, अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है, और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
3: जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं। और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पर आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी या कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉरवार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि

0: एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है, इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप, इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग का है,
1: तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रेडिक्शन भी पता चल सकता है।
2: देखिए, बिजली का जो प्रेडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग पता चलता है। तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट अ फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा। तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल
1: जी।
0: इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है। वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी बढ़वार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है। और
3: चर्चा को हम जारी रखेंगे, परंतु यहाँ पर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडिया भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार मानसून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं, तो किसान साथियों इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
2: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वह बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
3: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा, तो हमारा भारत का ऐसा नेचर मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है। 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
2: जी जी शिवेज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
4: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है धान है सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता है, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो हाँ ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने
2: हमारी के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
4: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़

0: का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया,
0: एक्सपोर्ट धान का किया है तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है यहाँ बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड ड्राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। अब साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए। तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: पानी खेत में, गांव का पानी
0: गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी, और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र में और हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है, और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है, और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई, तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से ही बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम आता है।
1: और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहें समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी हैं कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस तरीके से,
0: लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती है, तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टीसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है। हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे, जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय से ले सकते हैं। और जब मौसम आपका अच्छा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। जब अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव ना करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है।
3: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। जो मानसून की वर्षा है वो एक तरह से हमारे लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि ये वर्षा जो अपने साथ न केवल वर्षा का जल लेकर आती है, बल्कि जो हमारे पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति को, जो वातावरण है उसको पूर्णतः बदलने की क्षमता रखती है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने मानसून से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडाविल 90.8 एफएम के साथ, छावा की आवाज।
4: शहरों की चमक धमक से दूर, जहाँ सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहाँ चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।
4: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
7: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
8: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पे तो दिन है, आई एम इन USA इन ह्यूस्टन, सो इट्स द मॉर्निंग
7: जी,
8: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
7: क्या बात है, क्या बात है।
8: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
7: हम भी बहुत एक्साइटेड हैं मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। I can't wait to start this episode.
8: So do I. बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
7: I'm sure.
8: जी,
7: तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 ईयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में, अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
8: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
7: जी.
8: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है. बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे. उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे. तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे. रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन डेकोरेटिव इनडोर इस तरह का था
7: जी.
8: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
7: जी जी.
8: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी
7: सरे.
8: और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
7: जी.
8: तो जिनके होते खुशी और प्यार में बहुत महसूस होता था आसपास.
7: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ. मैम, आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में. तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी? किस तरह से आप चेंजेस लाए, और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
8: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था.
7: वाओ,
8: एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था. तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
7: जी.
8: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की.
7: राइट.
8: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा. और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में. और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना. तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था. बट जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी.
7: करेक्ट.
8: और तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे. तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
7: क्यूट.
8: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना
7: जी. इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बिताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
8: पता है मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला. मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
7: जब आप उसे लेने गए थे.
8: हक के साथ एकदम हक से और एकदम डट के, और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता. बिकॉज व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, यू नो. इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ के आके पास में
7: जी.
8: और कभी कभी लगता है, और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे. और उसका उतरना है तो मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं. जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो you know, इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से, तो अब वो हमारा ही हो गया. तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना
9: right.
8: उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया,
9: यू
8: नो ही पिक्ड चूज अस, यस
9: एब्सोल्युटली
8: ऐसा लगा.
9: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं, उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है, तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं, स्पेशली डॉग्स. तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
8: नहीं कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
9: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो हमारे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन कि आपके पास पेट्स एनिमल्स हमेशा रहे, यू ऑलवेज बिन अ पेट ओनर अ पेट पेरेंट, तो आप बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है।
1: मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो पेट्स प्यार मांगते हैं और उसके साथ साथ जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह और उसके साथ जो सही वक्त पर और सही किस्म का खाना हो उनको घुमाना है, पर उनकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी मेडिकल केयर, उनके वैक्सीनेशन के साथ अपडेटेड रहना हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब पेट केयर में शामिल होती हैं। उसके बगैर जैसे अपनी फैमिली के लिए बच्चों के लिए आप केयर करते हैं उसी तरह इनके साथ भी पेश आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूं कि हमारा बेंजी एक एपिलेप्टिक था।
0: दैट्स awesome.
1: हाँ, उसको एक मेडिकल कंडीशन थी जो जब वो हमारे घर पे आ गया
0: जी, जी.
1: उसके 2-3 दिन के बाद हमने नोट किया कि तो फ्राइडे शाम की बात कर रही हूँ और फ्राइडे थी और सडनली मैंने देखा बेंजी को सीजर्स हो रहे हैं। तो मैंने तो कभी ना सोचा था ना कभी सुना था कि डॉग्स को भी
0: एपिलेप्सी होती है जी,
1: हो सकती है जी. तो आई टोटली फ्रीक आउट, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है इसको। और फ्राइडे नाइट थी, सब कुछ बंद था, कोई वेटनेरियन नहीं था कोई, और हम लोग इस शहर में भी थोड़े बहुत नए थे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे कोई पेट हॉस्पिटल है पास या कुछ, तो जब तक हमको उन दिनों में टेलीफोन डायरेक्टरीज भी हुआ करती थी ऑनलाइन तो कुछ नहीं ना, मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ, जब तक मुझे एक फोन नंबर मिला एक एनिमल हॉस्पिटल का तब तक बेंजी का सीजर खत्म हो गया। ओके और फिर जब मेरी बात हुई जिन्होंने भी फोन उठाया दूसरी तरफ से तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन सी ब्रीड है आपकी, हमने बताया कॉकर स्पैनियल है, तो वो बोले कि कॉकर स्पैनियल्स में सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होती है फॉर सीजर्स। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी क्योंकि कभी कॉकर स्पैनियल तो ये फर्स्ट टाइम ही हमारे घर आया था
0: जी।
1: तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ी हमारी और फिर उसके बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे, तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना
0: जी जी,
1: तो वो बेंजी को दिन में 2 बार ही मिला करती थी और तो उसकी सेफ्टी के लिए और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था
0: जी।
1: तो नहीं तो इट्स नॉट ए वेरी टेस्टी, तो हाँ। और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो। हाँ
0: करेक्ट, कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको, आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा। और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं, जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था। तो बहुत ही जी, क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे, आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी, तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
1: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, काइंडनेस सीखी, एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना। और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना. तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो
0: बेटी
1: थी.
0: राइट.
1: क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सेडेशन भी आ जाती है ना. बहुत एक्टिव नहीं हुई तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खूब करते हैं और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो. पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था.
0: राइट राइट राइट. बहुत एक्टिव नहीं रहता था. जी जी जी बिल्कुल. जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं. तो ये तो बेजुबान जानवर है तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन. हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया. बहुत ही खूबसूरत बात है इनाम ये. इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं, घर का माहौल थोड़ा सा यू नो लो है, तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो? क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
1: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए. मैंने कहा ना एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हों या आप लो फील कर रहे हों.
0: हाँ जी.
1: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते कभी.
0: नहीं नहीं, देखते हुए भी अनजान बनते हैं हम साथ रहते हुए भी.
1: हाँ. और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है इट्स अनदर सेंस. तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उनकी गोद में रखता था, मेरी गोद में रखता था के, और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इस तरह. जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, जो रीअश्योर कराता था मुझे इस तरह. हाँ, वो फीलिंग आती थी मुझे. और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफकोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी. बट बेंजी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था. वो से आके सुनता था. सच्ची कह रही हूँ, कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी.
0: वाओ,
1: आई एम टेलिंग यू इट वाज सच अ मेमोरेबल.
0: एंड सो यूनिक,
1: बहुत यूनिक था. क्योंकि कभी कभी अगर घर के आसपास से एम्बुलेंस भी जा रही है ना, सायरन बजता था
0: जी, जी.
1: तो ये सायरन की आवाज निकालने की कोशिश भी करता था.
0: सच अ म्यूजिकल पेट. आई थिंक द पेट पेरेंट ग्रू ऑन बेंजी. आपकी जो आपका जो मेलोडी है दैट ग्रू ऑन हिम एंड ही बिकेम एज मेलोडियस एज यू. अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ साझा कर दी है कि आप म्यूजिक में बहुत इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं, जो मैं वैसे तो जानती हूँ बट हमारे श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि बिंदु मैम बहुत खूबसूरत गायकी करती हैं. तो एंड में आप हमें एक गीत तो जरूर सुनाएंगे बेंजी के नाम.
1: बेंजी के नाम से, ओह माय गुडनेस, ये तो यू आर कैचिंग मी टोटली अनअवेयर. बट
0: आप कोई सा भी गीत, एनीथिंग दैट कम्स टू यू नेचुरली, बट वो डेडिकेटेड होगा बेंजी को.
1: जरूर जरूर कोशिश करूंगी, जो मेरे बच्चे भी गाया करते थे उसके लिए कभी कभी.
0: जी,
1: तो वो आपको बता रही हूँ तो कभी कभी वो जैसे बोला ना अपना एक पॉ रखता था मेरे ऊपर और जस्ट रीअश्योर कराने के लिए. फिर कभी कभी जाके मेरे म्यूजिक इक्विपमेंट के पास या मेरे माइक के पास बैठ जाता था कि मैं वेट कर रहा हूँ अभी तुम गाओ. वेरी वेरी बहुत ही अच्छे,
0: वेरी मेमोरेबल. या वेरी मेमोरेबल. चलिए इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं सुरीली बातों के बीच में हम एक और गीत सुनेंगे. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, फिल्म कस्मे वादे.
1: sure.

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट 1 डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्ले थिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उनको पहले समझिए। एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ देम। अभी इंडिया में बात

0: हमारी अलग थी क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प काफी हो जाती थी. घर में हमारी मदर भी थी जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थी कि इसकी ग्रूमिंग सही होनी चाहिए, उसको रोज ब्रश करना चाहिए, उसकी फ्रॉक ठीक हो, सब कुछ, और उसको घुमाने के लिए एक्सरसाइज के लिए भी यू नो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विच ऑल्सो एक्चुअली हमें भी बहुत हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपना भी माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रेस करता है हमको, बहुत सारी मसलों के हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं. तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए, पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी. और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट.
1: एब्सोल्युटली.
0: क्योंकि यू नो कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे. फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी अभी जरूर इंडिया में बात अलग है, पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट, आपके किसी को काट लिया जाके. आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉपर लीश लॉ,
1: राइट? इट्स अ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट.
0: यस, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहाँ पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है. और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी टाइम परमिट.
1: जी बिल्कुल.
0: वो बहुत बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए. मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ, पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी. तो इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी बाद में अगर.
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, यू कैन शेयर इट राइट अवे. बिल्कुल टाइम है जी.
0: तो वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे. उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था. अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है. इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग. तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी. तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी, सो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, यू नो 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं. सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वॉज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था. और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे, ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था, साइड वॉक पे. अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे.
1: ओह शिट.
0: तो हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा, तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग. तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे ऐसे लगा बहुत, हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माय कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है. तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया, एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी और डायलेटेड थे उसके. और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं, तो एकदम नेचुरल आता है मेरे साथ. देखा कि दिस डॉग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं, तो एकदम नेचुरल आता है मेरे साथ. देखा कि दिस डॉग प्रैक्टिकली डेड.
1: ओह माय,
0: यू नो. हाँ, तो मैंने उसको कुत्ते को हाथ में उठाया एंड द फर्स्ट, और मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर भी हूँ
1: जी जी
0: हेल्थ केयर फैसिलिटी में. तो वो एकदम जैसे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये तो कुत्ता ब्रीथ नहीं कर रहा है,
1: राइट?
0: और मैं उसको माउथ टू माउथ तो नहीं देना चाह रही थी, पर मैंने अपने थंब के साथ ना, जैसे बेबीज को हम रिससिटेट करते हैं, न्यू बॉर्न्स को, तो हमने उसके

0: I started giving him like thumb के साथ उसको compression के heart के मैंने कहा इतनी कहीं अभी मैं कुत्ते का anatomy नहीं जानती
1: correct correct
0: ये कहा कि छोटा सा है यहीं कहीं इसका दिल भी होगा
1: दिल है right
0: तो मैंने अपने thumb के साथ एक हाथ के साथ उसको उसको compressions देने शुरू करे अंदर से मैंने I was praying कि ये भगवान इस कुत्ते को बचा लो
1: बिल्कुल
0: जिस तरह से और क्योंकि वो जो थे उनके ओनर थे वो भी आए ऊंची ऊंची रो रहे हैं उस कुत्ते का नाम था गोंजो
1: राइट
0: तो वो मैं भी आज तक भूली हूँ इस बात को बहुत अरसा हो गया है बट ही केम ऑन वो गोंजो डोंट गो गोंजो डोंट गो इस तरह से वो ऊंची ऊंची चीख रहे थे और विद इन 5 to 7 minutes की जब मैंने कंप्रेशन करी तो सडनली उसने अपनी आंख को झपका
1: ओह माय
0: हाँ उसकी आंखें एकदम खुली थी ना बताया एकदम डायलेटेड वगैरह तो उसने अपनी आंख को झपका तो मैंने थोड़ी सी दिल में उम्मीद आ गई कि ये
1: बच सकता है
0: इज कमिंग बैक टू लाइफ और जिस घर के बाहर ये सब हो रहा था ये उनका घर भी नहीं था ये तो उनके घर से काफी दूर था बट उनका लॉन स्प्रिंकलर चल रहा था वहां पे तो मैंने उसकी डॉग की तो जो जीप थी वो तो ऑलरेडी बाहर लटक रही थी तो हमने थोड़ा सा पानी लेके उसकी जीप के ऊपर रखा तो उसने उसको पी भी लिया सो यू नो दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ और तो फिर अभी मुझे आगे जाना था अपनी मम्मी को पिकअप करना था कहीं से तो थोड़ा इमरजेंसी था मेरे लिए तो मैंने इनको बोला आप ऐसा कीजिए कि आप इसको अपने वेट के पास ले जाइए और इसको चेकअप करा लें अभी मुझे आगे जाना है तो बोले कि हमारा तो वेट ही नहीं है
1: बताएं।
0: तो मुझे अंदर से गुस्सा हाँ मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया आई टेल यू तो वही मिला नेबरहुड के बाहर एक शॉपिंग स्ट्रिप थी वहाँ पे उनका
1: वेट
0: हॉस्पिटल था तो अपने डॉग को वहाँ ले जाती थी अभी इतना महंगा कुत्ता आपने रखा है शिवावा रखा है और आपके पास इसका
1: वेट नहीं है
0: हाँ तो इसकी भी प्रॉपर केयर आप कराइए तो सही तो मैंने उनको बोला लीजिए मेरी चाबी पकड़िए आप मेरी कार चलाइए और मैं आपके कुत्ते को ऑब्जर्व करती रहूंगी एंड आई विल गाइड यू आप हमारे वेट के पास मैं आपको ले चलती हूँ
1: राइट इमेजिन
0: मैंने ऐसे ही किया हाँ तो मैं उसको ले गई वहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है कि देर हो गई अभी एनीवे मुझे जैसे लगा ना किसी जैसे ह्यूमन की लाइफ हम बचा रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको फॉलोअप भी करना है तो मैं अपने वेट के पास इनको ले गई और उनका नाम डॉक्टर कीडो था
1: जी
0: और अभी भी है उनका पेट हॉस्पिटल वहीं पे
1: जी
0: तो एनीवे उनको हमने बताया पूरा किस्सा मैंने कहा आप नाउ दिस डॉग इज योर्स और मेरे को जाना है आगे तो आप उसको प्लीज रखिए अभी वहां से मैं निकली बाहर और मम्मी को मैंने वही नेबरहुड में से लिया और मम्मी को पूरा किस्सा सुनाया तो अब मम्मी भी तो डॉग लवर है तो उनको एकदम इतनी कंसर्न हो गई कि ओए ओ कुत्ता वो पंजाबी हम लोग हैं
1: जी,
0: ओ कुत्ता बेचारा
1: जी आई कैन इमेजिन मैम जी जी
0: तो ये सब हुआ अच्छा उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई वापसी पे मम्मी ने कहा नहीं वेट के पास चलो वेट के पास चलो
1: तो
0: हम गए तो पूछे तो द डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाटएवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया था
1: राइट राइट
0: इसके ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था
1: राइट
0: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे वी विल ऑब्जर्व है तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया पर उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया
1: बताएं जबकि आप ही ने सेव किया
0: दिन रात को पता क्या हुआ जब हमने रात को उनको फोन किया उनको मैं जानती थी हमारे इंडियन लोग ही थे तो मैंने उनको पूछा वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट
1: Of course, so, they were thinking it is an opportunity for them instead of taking care of the pet, yes.
0: You know, like, tell me how many people would... हम तो अपना निकल ही जाते हैं.
1: नहीं, रुकते भी नहीं हैं, ma'am. Yes, yes, people don't stop also.
0: Yeah. So what I did, actually, उसी हमारे को, हमारे friends के बेटी और उनका जो हस्बैंड थे वो अटॉर्नीज हैं, तो मैंने उनको फोन किया, देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ और इज देयर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके, तो गाड़ी से तो मेरी टकराया, बट नॉट बट एनी वे उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला आंटी यू डोंट ओ देम एनीथिंग एट ऑल, बट इफ एनीथिंग दे ब्रोक द लीश लॉ, ओके कुत्ते लीश पे नहीं था,
1: नहीं
0: और आपने तो जिंदगी की जान बचाई है,
1: यस
0: यू नो
1: इवन यू ड्रोव इट टू द वेट,
0: यू विल डू व्हाट यू डिड,
1: यस
0: सो एनीवे तो उसने बोला, बट हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर था ना
1: जी
0: क्रॉनिकल
1: जी जी
0: नाम है, तो बोले बट आंटी दिस विल मेक अ ग्रेट स्टोरी फॉर द ह्यूस्टन,
1: इंडीड.
0: So,
1: indeed,
0: I'm telling you, so this also happened in my life, and I always, you know, share and teach CPR.
1: Yeah, absolutely.
0: Na kare par compression zarur kijiye.
1: Right.
0: You know, because heart ko wapas lana bahut crucial rehta hai. Aur chahe wo janwar ho, chahe wo humans ho, to ye cheez mere बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है किसी को भी इस तरह का,
1: एब्सोल्युटली वेरी रेयर एंड या वेरी लाइक यू नो सिग्निफिकेंट इन योर जर्नी वेयर इन कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिंट करने की कोशिश करते हैं जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास वेट भी नहीं है, विच इज अमेजिंग फॉर मी. आई मीन एंड यू आर पेटिंग अ डॉग दैट इज यू नो एज एक्सपेंसिव लाइक यू मेंशन एंड एज यू नो हाई मेंटेनेंस एंड उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर, जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो. सो हाउएवर it's amazing that you know the way you handle the situation and I'm so happy that the pet survived, you know, sabse badi baat ki the pet survived, Gonzo, right? Yeah, beautiful. So,
0: that's
1: beautiful.
0: Significant in my life too.
1: Yeah.
0: मैं जरूर होता है तो शेयर कर देती
1: हूँ. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. चलिए इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं जीवन के एक्सपीरियंसेस के बीच हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जीवन का ही फलसफा है. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले. फिल्म बड़े दिल वाले.

0: आगे चलते हैं मैम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपना जीवन पेट्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी लंबी जीवन जो जर्नी आपकी रही है, उसमें पेट्स आपकी जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो क्या आपका जीवन पेट्स के बिना आज वैसा ही है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन पेट्स के बिना होगा, और किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो लाइफ लेसन अगर कुछ सीखा हो अपने पेट से, तो वो क्या होगा?
1: ऐसा है कि पेट्स के साथ एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, यू नो, ये चीजें बहुत अहम रहती हैं। क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कार्पेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा जाके या कुछ करूंगा। और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओ आई कैन गेट अवे विद दिस, इस तरह से होता था। पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे। तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो ठीक था। और दूसरा सवाल, वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं।
0: ब्यूटीफुल, यस।
1: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट।
0: करेक्ट करेक्ट। बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
1: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला। और देख रही थी टीवी पे आजकल एक वुफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वुफी ले आऊं अपने लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए, और बहुत ही खूबसूरत

0: बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की। अब अंत में जैसे मैंने कहा था, बिकॉज आप गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग। मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो
0: जी
1: हमें गाना इंग्लिश में है गाया करते थे, और
0: जी
1: तो वो उसकी दो लाइनें सुना सकती हूँ आपको। सो
0: बिल्कुल
1: इट वॉज लाइक दिस। यू आर माई सनशाइन, माई

0: keep my Please don't take my sunshine away.
1: Yeah, this is a beautiful song.
0: I'm sorry,
1: very beautiful song. Yeah, it's a very sunny and lovely song. I've heard it before. It's a beautiful song. And I hope ye song aapki feelings, hamari feelings, puri SN family ki feelings, Benji tak heavens mein zarur pahunchi hongi. Aaj humne Benji ko yaad kiya aur usse ye geet dedicate kiya, ye episode dedicate kiya. So I hope Benji is smiling at us from the heavens above. Thank you so much,
0: Indula.
1: Sure.
0: Thank you, dear, for the opportunity, Tanusha. God bless you.
1: Thank you. Thank you so much. Aaj humare saath judne ke liye aur itni achhi baatein saajha karne ke liye.
0: Sure. It was a pleasure.
1: Ji. बिंदु जी और बेंजी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। बेंजी की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया। बिंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड बेंजी को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग सिर्फ एसएन रेडियो पर। याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं, लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

0: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत।
5: सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं हम। हम उनमें से उन लोगों को चुनते हैं जो या तो बहुत प्रतिभावान होते हैं

अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं या जिन्होंने बहुत सारे अनुभव बटोरे हुए होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फेल हुए होंगे, पास हुए होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे। तो आइए दोस्तों, आपको आज बता रहा हूं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना हुआ होगा। इनका नाम है लियोनार्डो द विंची। जी हां, ये वही इटली के महान कलाकार थे। बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके अंदर क्या क्या काबिलियत नहीं थी दोस्तों, वो सुनिए। ये वास्तुशिल्पी थे, ये इंजीनियर थे, एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे। तो चलिए मान लिया कि टेक्निकली यानी कि तकनीकी तौर पर बहुत प्रभुत्व थे। साथ ही साथ ये कविता बहुत अच्छी लिखते थे, ये गाना बहुत अच्छा गाते थे, ये संगीत बहुत अच्छा बनाते थे, ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, ये मूर्तियां बहुत अच्छी गढ़ते थे, ये बहुत ही अच्छे खान सामा थे, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते थे। तो मजेदार वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं बिल्कुल होती हैं दोस्तों। कभी आप अपने अंदर की प्रतिभा को भी जरा खोज के तो देखिए। तो इन्होंने कहा था, जो भी व्यक्ति काम करने के तरीके या उसकी थ्योरी को समझे बिना ही बस शुरू हो जाता है, काम को करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे नाविक जिसे मालूम ही नहीं कि जाना किस दिशा में है और बस नाव लेके चल दे। लियोनार्डो द विंची का कहना है कि यदि आप पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी, यानी कि आपका दिमाग तरोताजा रहेगा जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं। और ये बात तो है दोस्तों, हम लोग अक्सर कुछ भी सीखना बंद कर देते हैं, हमें लगने लगता है हमें तो सब कुछ आता है। असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीजों को अगर हम समझना शुरू कर दें तो मजा आ जाए। इंसान को सबसे बड़ा धोखा अपने गलत विचारों से मिलता है, किसी और से नहीं। एक समझदार व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की ही ख्वाहिश रखता है और किसी चीज की नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान मिल जाए तो सब चीजें अपने आप चली आती हैं। सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना भी सीखें। इसी तरह से काम करने की इच्छा शक्ति होना भी काफी नहीं है, काम करके दिखाइए भी तो। एक अच्छी तरह से बिताया हुआ दिन सुखद नींद लेकर आता है। अगर आपने कुछ ना कुछ किसी दिन सीखा है तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग बहुत संतुष्ट होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। जो गुणों के बीज बोता है वही जीवन में आगे चलकर सम्मान की फसल काटता है। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी होती है। अंत की तुलना में शुरुआत में विरोध करना बहुत आसान होता है। आप किसी चीज के आखिरी में पहुंच जाएं और फिर उसकी तुलना करें, ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों। तो जो आप नहीं समझते हैं यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि आप उस चीज को जानते ही नहीं तो प्रशंसा भी नहीं कर सकते और बुराई भी नहीं कर सकते दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: डॉक्टर ने पूछा, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो बे? गप्पू ने कहा, डॉक्टर साहब आप ही ने तो लिख रखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

देखिए भाई, माफ करने से गुस्से, दर्द और दुख की वो श्रृंखला, वो सीरीज टूट जाती है जो हमारी डेवलपमेंट में, हमारे विकास में बाधक बनी हुई होती है। माफ कर दीजिए, हमें जिंदगी की ओर ले चलिए। माफ करने से ना हम आजाद हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं और आगे के लिए बेहतर चुनाव कर पाते हैं। इसलिए हम गुस्से और बदलाव की भावना से सुलगते रहते हैं, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। भाई, दूसरों को माफ कर देना अपने आप को आजाद करना होता है। इससे दूसरा आजाद नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार कमजोर और फीका तो कई दफा मजबूत और रोशनी से लबालब चांद समझता है मनुष्य होने का मतलब। जीवन यात्रा में आए दिन तमाम तरह की उठापटक होती ही रहती है, या कुछ समय के लिए कदम पीछे कर लेना हमेशा मंजिल से दूर नहीं करता हमें। लंबी यात्राओं में देखिए, हर पड़ाव जरूरी होता है। गति का महत्व है तो ठहराव का भी उतना ही महत्व है। इसलिए रुकिए, सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। सपनों के सच होने की संभावना ही जीवन को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए उम्मीदों का होना, जिंदगी की धूप में घनी छाया का होना, जिसके साए में बढ़ते रहना आसान होता है। अगर कुछ देखिए होने की, बदलने की उम्मीद ही ना हो तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। कुछ करने का जज्बा उम्मीद के सहारे ही जोर पकड़ता है। हमारा भविष्य हमारी उम्मीदों से आकार लेता है। इसलिए उम्मीद हमेशा बनाए रखें, लेकिन ख्याल रखें, उम्मीदों से बंधना भी बहुत खतरनाक होता है।

0: याद।
1: पुस्तकें, संसार की सारी पुस्तकें नहीं देती तुम्हें कोई खुशी, लेकिन वो सिखाती हैं रहस्य खुद में लौट जाने का। वहां है वो सब जो तुम्हें चाहिए, सूरज, तारे और चांद, क्योंकि प्रकाश जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे अंदर बसता है। बुद्धि, जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे हो पुस्तकालयों में, आभा जो हर पन्ने से निकलती है, अभी के लिए वो तुम्हारी ही है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वीरू बोला, भैया सुना है शादियां आसमान में तय होती हैं।
2: जय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि तूफान और बिजली भी आसमान से ही कड़कती है।
3: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
4: फिर कब मिलोगे?
3: जब तुम कहोगे।
4: तुम्हें रात को?
3: हाँ, आधी रात को।
4: कहाँ?

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार? रेडियो के साथ सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। थका मैं, हारा मैं, गिरा मैं, कदमों की आदत ये कब रही, इस तरह काटे रास्ते मैंने, मंजिलों की मेरी तलब रही। तुम्हें तो सिर्फ वो काला लैपटॉप का बैग नजर आता है, वो कंधों पे रोज न जाने क्या क्या दफ्तर ले जाता है। हर शख्स शहर में यहां अजनबी सा लगे, और मेरे गांव का वो बूढ़ा पेड़ भी मेरे यार सा है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, सफलता की चाबी सवेरे उठने में है, और अगर चाबी ना मिले तो फिर सो जाओ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का यह गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल।

हेमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और गीत

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुलगते नहीं हैं हम। मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। फिर ये भी के शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, जिसने जैसा समझ लिया बस वैसा ही हूँ मैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हम सब का कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्तहान जरूर लेती है। जिंदगी हर शख्स की हैसियत, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हसरतें, उसके शौक, उसके कारनामे बुरे या अच्छे देख कर ये तय करती है कि उस शख्स का किस तरीके का और कौन सा इम्तहान लिया जाए। शायद इसीलिए इस दुनिया में किसी के सब्र की आजमाइश मुश्किलों के दौर में होती है, तो किसी ज़र्फ यानी सेल्फ इस्टीम को बड़ी बड़ी कामयाबियों के बीच में परखा जाता है। मगर सच तो ये है कि इन इम्तहानों के साए में जब भी

हमारा दिल उदास या तन्हा होता है, तब अदब की दुनिया और सुरों की महफिल ही हमारे टूटे हुए हौसले को एक नया मोड़ देती है। जब जहन थक जाता है तो खालिस नज़मों का एक मिसरा भी हमारी बिखरी हुई सोच को मखमली तसल्ली अता करता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी कश्मकश को समेटे हुए आगे बढ़ेगी। आज के हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक की महफिल में सुरों के इस सफ़र को हम कुछ ऐसे अनोखे फनकारों की मेराज से सजाने जा रहे हैं जिनके गाए कलाम आपकी रूह को इस ज़िंदगी के अलग अलग फ़लसफ़ों से रूबरू कराएंगे। तो अपने जहन की मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और इन ताज़ा तरीन एहसासों के साथ इस हसीन शाम को अपने नाम कर लीजिए। फिर चलते हैं सुरों के इस नए मरहले की तरफ और आगाज करते हैं आज की हमारी पहली नायाब पेशकश का। दोस्तों, आप में से कई जन आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव रविशंकर से जुड़े होंगे। ज़िंदगी की जिन मुश्किल इम्तहानों का ज़िक्र मैंने आपसे किया, उन इम्तहानों की धूप में अपने मुर्शद यानी गुरु का साया ही वो मंजिल है जहां पहुंचकर हर कश्मकश ख़त्म हो जाती दिखती है। दिखती क्या, हो ही जाती है। जब हम रूहानी रहनुमाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बेहद मुकद्दस पाक नाम उभरता है, आर्ट ऑफ लिविंग के बानी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया को अमन, मोहब्बत और जीने का सही सलीका सिखाने के सुपुर्द कर दी है। उनकी मौजूदगी ही इंसानी वजूद को एक नई राह दिखाती है। और जब एक सच्चे मुरीद की अकीदत यानी आस्था अपने मुर्शद यानी गुरु के कदमों में झुकती है तो अल्फाज इबादत बन जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के बेहद अजीज और बाकमाल शागिर्द स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी ने गुरु भक्ति के इसी जज्बात को इस नगमे के जरिए पेश किया है। स्वामी जी की आवाज में जो एक रूहानी कशिश है वो इस बात की गवाही है कि ये नगमा उन्होंने गाकर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि अपने मुर्शद की बारगाह में मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया यानी समर्पित कर दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस फिल्मी नगमे को जब स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा ने गुरु वंदना का रूप दिया तो इसके मायने ही बदल गए। जरा इस बंदगी के जज्बात को महसूस कीजिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। दोस्तों, यहाँ मोहब्बत का मतलब दुनियावी चाहत नहीं है बल्कि रूह का वो रूहानी मिलन है जहाँ एक मुरीद अपने मुर्शद की पनाह में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की इस बेहद भावुक और सुरीली पेशकश। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। आपकी नज़र।

मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। और फिर ऐ फातिया कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। दोस्तों, जिंदगी के इम्तहानों की जिस कश्मकश का जिक्र आज हमारी इस महफिल की बुनियाद है, उसी सिलसिले को एक तारीखी मुकाम अता करता है हमारा ये नगमा। ये शाहकार फिल्म लाल किला का है, जो कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की कलम से निकला था। ये कलाम इंसान की मुकम्मल बेबसी, तन्हाई और वक्त की बेरहमी का सबसे साफ आईना है। असल तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब की पाक आवाज़ में रिकॉर्ड हुए इस दर्द को आज हम एक और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी आवाज़ का पैरहन दिया है हिंदुस्तान के एक बेहद सुरीले और संजीदा गुलूकार संजय सावंत ने। दोस्तों, संजय सावंत जी की अदबी ज़िंदगी भी बेहद दिलचस्प है। वो संगीत के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हमें टेलीविज़न इतिहास के शो इंडियन आइडल के पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत जैसे सिंगर को हमें हमारा तारुफ़ कराया। अभिजीत को संगीत अभिजीत के संगीत की शुरुआती रहनुमाई और तालीम देने वाले उनके अपने सगे चाचा यानी संजय सावंत ही थे। संजय सावंत का अपना अंदाज रफ़ी साहब की गायकी से बेहद मुतासिर रहा है, और यही वजह है कि उनकी इस ठहरी हुई पुरअसर आवाज़ में ये गज़ल का सोज सीधे सुनने वालों के जहन पर तारी हो जाता है। तो आइए वक्त की इस बेहद संजीदा आजमाइश में डूबने के लिए रुख करते हैं इस खास पेशकश की तरफ। मुलाहिज़ा फरमाएं, संजय सावंत की खूबसूरत आवाज में ये अमर शाहकार। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। शौक फरमाए।

दोस्तों, हमारी आज की महफिल की बुनियाद ही उन जज्बातों पर टिकी है जो ज़िंदगी की आजमाइशों में टूटकर बिखर जाते हैं, जब इंसानी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तो वजूद की उस मायूसी को ज़बान देता है हमारा ये अगला कलाम। ये नगमा है फिल्म शाहजहां का, जिसे संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। बुनियादी तौर पर कुंदन लाल सहगल साहब की आवाज़ में अमर हुए इस दर्द को जब हम सरहदों के पार से आई एक ऐसी आवाज़ में सुनेंगे तो सुनकर बेशक हैरान हो जाएंगे। इस नज़्म को अपनी रूहानी तासीर दी है अफ़गानिस्तान के बेहद इल्मी और बाकमाल गुलूकार डॉक्टर मोहम्मद सादिक फितरत साहब ने, जिन्हें मौसीकी की दुनिया में नाशनस के नाम से जाना जाता है। नाशनस का मतलब होता है अजनबी या गुमनाम, जो कि अपनी पहचान छुपाकर सुरों की इबादत करता रहा हो। सहगल साहब की गायकी से इस कदर मुतासिर हुए कि ज़माने ने उन्हें अफ़गान सहगल का खिताब दे डाला। उनकी आवाज़ में वो धीमापन और बेदाग उर्दू लहजा इस बिखराव के दर्द को और भी गहरा कर देता है। वह महज एक गायक नहीं हैं, बल्कि मॉस्को यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले एक काबिल स्कॉलर भी हैं। उनका जन्म 1935 में अफ़गानिस्तान के कंधार के एक संभले हुए मजहबी घराने में हुआ, जहां संगीत सीखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो बचपन से ही रेडियो पर केएल सहगल को सुनते थे और उनके दीवाने भी थे। इस गज़ल के मशहूर मिसरे कुछ इस तरह हैं, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया हम जी के क्या करेंगे, फिर मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी रूट गया हम जी के क्या करेंगे। तो आइए तन्हाई के इस बेहद संजीदा मरहले की और सुनते हैं इस खास पेशकश को। मुलायजा फरमाएं नाशनस के इस मखमली और तारीकी वर्जन में ये कलाम, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। नाशनस की आवाज़ में

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तिहानों की धूप जब बहुत कड़ी हो जाती है तो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अपने महबूब की तकलीफ को दूर से सिर्फ देखता नहीं रहता, वो आगे बढ़कर उसके तमाम दुखों को अपने नाम कर लेना चाहता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में रूहानी वफा के उसी ऊंचे मकाम को लिखा है, जहां आशिक अपने महबूब से कहता है कि अपने हिस्से की सारी बेचैनी और ये खामोश तन्हाई मुझे सौंप दो। बुनियादी तौर पर ये गज़ल जगजीत कौर ने गाई है और ख़याम साहब की लाजवाब मौसीकी में, लेकिन आज हम आज के दौर की एक बेहद इल्मी और बाकमाल गुलकार डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जम्मू की सरजमी पर पैदा हुई डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी ने बनारस घराने की शालीन बंदिशों और बेगम अख्तर की मखमली विरासत में ढलकर गज़ल गायकी को एक नई

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहान की जिस आजमाइश का ज़िक्र आज हमारे सफ़र की बुनियाद रहा, उसका सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अक्सर उन चीज़ों या उन रिश्तों के पीछे भागता रहता है जो शायद उसकी किस्मत के दायरे में कभी थे ही नहीं। जॉन एलिया ने इस कलाम में दिल के उसी गहरे मलाल और एक कड़वी हकीकत को लफ्ज़ों में बयां किया है। वो कहते हैं, जो वजूद जो मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसके खो जाने का ज़माने से शिकवा करना महज एक नादानी है। जॉन एलिया की शायरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी बनावटी तसल्ली का सहारा नहीं लेते, बल्कि ज़माने के कड़े सच को सीधे आईने की तरह सामने रख देते हैं। उनकी इसी नफीस नज़्म को जब एक मखमली और ठहरे हुए सूफियाना अंदाज में सुना जाता है तो वो हर दिल में सुकून पैदा करता है जो किसी अधूरेपन की कशमकश से गुज़र रहा हो।

गजल का मिसरा कुछ यूं है, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, अब तो अपना भी कोई सिलसिला ही नहीं। फिर कहते हैं, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, इस शहर में कोई हमें अपना मिला ही नहीं। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और सुफियाना मुकाम पर ध्यान से सुनते हैं जॉन एलिया साहब की इस लाजवाब पेशकश को, जो था ही नहीं कभी मिला ही नहीं।

ही समेटने का और आपसे विदा लेने का। अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहें अपना प्यारा SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भीर। अपनी सेहत का, अपनी चाहने वालों का और अपनी सोच का भी ख्याल रखिएगा। आप सभी कदरदानों को मेरी तरफ से पुरसकून शपा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, छाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वह अपनी कृषि में नवीनता लाए और प्रकृति में और पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को भली भांति समझे और अपनी कृषि में इस बदलती प्रकृति के अनुरूप कृषि करे। साथ ही हम यह प्रयास करते हैं कि आप तक उन्नत बीजों को आप तक पहुंचाया जा सके, साथ ही जो नवीनतम कृषि पद्धतियां हैं वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो केवीकी के माध्यम से, जो केवीकी के जो एक्सपर्ट है उनके माध्यम से आप तक भिन्न भिन्न फसलों के एक्सपर्ट को आप तक, उनके विचारों को आप तक पहुंचाएं, साथ ही आपकी समस्या को आप एक्सपर्ट को आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और आपके खेतों में जो समस्याएं आ रही है उसे हम निदान भी पा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मौसम आधारित खेती के ऊपर। हमारा जो मौसम है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें कौन सी फसल हमें करनी चाहिए, किस फसल में हमें मुनाफा हो सकता है, साथ ही इन फसलों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: बात करने वाले हैं मॉनसून और खेती की। जी हाँ, मॉनसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मॉनसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे।
5: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर मानसून के ऊपर, क्योंकि जो हम कृषि करने वाले हैं इसमें मानसून की अहम भूमिका रहती है। बहुत सारे किसान हैं जो मानसून आधारित खेती करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इस साल का मानसून कैसा होने वाला है, सारी चीजों को हम जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं।

0: भारत में मॉनसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मॉनसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मॉनसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मॉनसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, मॉनसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
2: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है। इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए, और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा, और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वेरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25 के बाद
2: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है, तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
3: देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन

0: लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
2: नहीं, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो है प्रबंधन करना चाहिए फसलों में। जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैंने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है, मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो, लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफेड एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन पानी को स्टोर करना है कौन सा यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा एसएमएस जाता है उसका इस्तेमाल करें।
1: जी यानी जरा मनी जी जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं पूर्वानुमान होते हैं इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं बल्कि ये भी सोचे कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
3: बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी, जी।
3: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: जी शिवे जी इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
0: देखिए बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरिगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनके कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी, और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
1: जी,
0: है।
1: लेकिन जी जी जी सर,
0: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
0: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार ही चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
0: समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से और बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
2: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे ही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर वो ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
1: मिट्टी को भी
2: दूषित करेगा और वहां से जो है ग्राउंड वाटर में चला जाएगा।
1: जी, जी।
2: और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं अन्य जलीय जंतु हैं,
1: कंटेमिनेट हो जाएगा।
2: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु है वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं, ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा, इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मानसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मानसून और खेती की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मानसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, किसान
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मानसून की खेती के ऊपर। तो आइए जानते हैं किस तरीके से मानसून की खेती में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आती है और इसके हिसाब से हमें कौन से कदम आगे उठाने चाहिए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
3: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। सो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है, एक है एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है, जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं मैसेज के थ्रू में भेजते हैं, अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, तो सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है सभी किसान भाई, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है, हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
3: बिहार में
1: जान भी गई,
3: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटेजी है है वो डेवलप करें। तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
0: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25-30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णिया छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायोफर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या
1: हमारा
0: गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफको जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन और पर्णिय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
0: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णिय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है, अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहे।
2: जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीएआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉरवार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पर आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी या कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉरवार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है, इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप, इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुए, दामिनी ऐप जो बारे में बताइए कि बिजली का प्रेडिक्शन भी पता चल सकता है।
3: देखिए, बिजली का जो प्रेडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग पता चलता है। तो आधा घंटे
2: पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है। और
5: चर्चा को हम जारी रखेंगे, परंतु यहाँ पर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्या भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे

0: हमारा रेजो टांटिया भिन्नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार मानसून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं, तो किसान साथियों इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
3: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वो बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जनमनी जी, जैसा कि हम मॉनसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मॉनसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मॉनसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मॉनसून क्या है?
4: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मॉनसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मॉनसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मॉनसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है। 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
3: जी जी शिवेज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
5: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो हाँ ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
5: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
3: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया,
5: एक्सपोर्ट धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड ड्राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। अब साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मक्का ज्वार बाजरे को, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए। तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी, खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी,
3: पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव
5: में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
3: सफेद सोना भी कहा जाता है।
5: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र में और हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग। तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए, गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है। और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है, और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके, वो भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम
3: बिल्कुल। और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी हैं कि बारिश अगर ज्यादा हो गई तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस
5: तरीके से, लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइने भी 2-3 आ जाती है। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं, या किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
3: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं, और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। जब अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव ना करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है। किसान साथियों, हमेशा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि हमारे किसान भाइयों तक वह उन्नत कृषि की नई पद्धतियों को, नई तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा जो किसान है वो अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे बदलावों को समझ पाए और अपनी कृषि में नई कृषि को कर सके। साथ ही अगर हम देखें, हमारा जो झाबुआ का किसान है वो अभी मुख्यतः खाद्य फसलों की ही फसल करता आ रहा है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम यहाँ पर फलों की, फूलों की और भी अन्य प्रकार की जो खेती है उसको भी किया जा सकता है और यह संभव है। और यहाँ पर इसके लिए हमें जो किसान जो इनकी खेती करना नहीं जानते हैं, उसके लिए केवी की जो संस्था है हमारे झाबुआ जिले में उपस्थित है, तो केवीकी के मदद से भी हमारा जो किसान है वो प्रशिक्षण ले सकता है और प्रशिक्षण के साथ हमारा जो केवीकी का जितने भी अधिकारी है वो हमें मदद करेंगे हमारी फसलों को देखने में, हमारी फसलों का निरीक्षण करने में और समय समय पर फसलों में हो रहे बदलावों को, फसलों में हो रहे कीटों और जो बीमारियां हमारी फसलों में आती है उसके निदान के लिए भी हमेशा हमारे लिए तत्पर रहेंगे। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें अपना रुख करने की जरूरत है अलग अलग कृषि के ऊपर। तो किसान साथियों, आप में से जो भी किसान साथी अगर भिन्न भिन्न कृषि करना चाहता है तो केवीकी में जाकर अपनी पसंद की कृषि को लेकर वहां जाकर चर्चा में शामिल हो सकता है और जो भी वहां से मदद मिलती है उसके द्वारा हम हमारे कृषि में एक नवीनता ला सकते हैं, कि बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अभी तक जब हम जहां तक अभी हम जानते हैं कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वो मुख्यतः दलहन और खाद्य फसलों में मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन इन्हीं फसलों में ही अभी रह गया है। इसके अलावा बहुत ही कम फसलें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमारे लिए अच्छा मौका है, हम यहाँ पर फलों की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार की खेती की जा सकती है और वो भी कम से कम लागत में। तो कैसे हो पाएगा ये संभव, जानेंगे हम रेडियो टांटिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानेंगे आज भी कुछ नई कृषि के बारे में, कुछ और नई उन्नत कृषि को लेकर आज के इस दिन में हम चर्चा करेंगे और मिलेंगे कुछ और नए एक्सपर्ट से। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: पशुपालन ग्रामीण समाज का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में भी गांव और खेतों में खुशहाली सबसे ऊपर है और ये खुशहाली तब आएगी जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, किसान और पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोगों यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए भी स्टार्टअप ब्रांड की शुरुआत की है। तो क्या कुछ कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लेकर, आइए देखते हैं।
1: पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, हमारे पशु बार बार बीमार न हो उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज, उससे मुक्ति, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें, इसका एक व्यापक अभियान हम आरंभ कर रहे हैं। FMD यानी फुट टू माउथ डिसीज, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ इलाकों में उसके लिए शब्द प्रयोग रहता है मुंहपका। ये मुंहपका जो बीमारी है उसके उपाय, बीमारी से मुक्ति का ही अभियान है। 51 करोड़ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाई और बहनों, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो। भाइयों और बहनों, भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीक की जरूरत है। ये इनोवेशन हमारे ग्रामीण समाज से भी आए, इसलिए आज स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, मैं खास करके नौजवानों को कहता हूं, बेंगलोर हैदराबाद में स्टार्टअप की जाल पर काम करने वाले देश के होनहार नौजवानों को विशेष रूप से कहता हूं, IIT में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से कहता हूं, आइए स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप उससे जुड़िए और आप, हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें भी पोषक आहार कैसे मिले, प्लास्टिक की थैलियों का सस्ता और सुलभ विकल्प क्या हो सकता है, ऐसे अनेक विषयों का हल देने वाले स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, शुरू किए जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉन्च कर रही है।
6: आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
7: हमारे देश में काफी संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हैं। पशु ग्रामीण समाज का आधार है। गांव के लगभग हर घर में पशु पाले जाते हैं, जो उनके घर का ही एक हिस्सा होते हैं। और हो भी क्यों नहीं, इन्हीं पशुओं से मिलने वाले दूध आदि के जरिए पशुपालक को न सिर्फ आमदनी होती है, बल्कि गांव से बाहर शहरों की भी दूध घी आदि की जरूरत को वो पूरा करता है। लेकिन पशुपालन से लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारे पशु एकदम स्वस्थ रहेंगे। पशुओं को स्वस्थ और दुधारू बनाए रखने के लिए पशुपालन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान पशुपालकों को रखना चाहिए। पशुओं में मुख्य रूप से होने वाले रोग हैं खुरपका और मुंहपका। इस रोग में पशुओं के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं। ये छाले धीरे धीरे घाव में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु ना ही चरने के लिए बाहर जा सकता है और ना ही कुछ खा पाता है। दुधारू पशुओं में इस बीमारी से दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। छोटे पशुओं में रोग जल्दी फैलते हैं। इसके प्रकोप से बछड़े जल्दी मर जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NACDP की शुरुआत की है। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कुल 12,652 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देश में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए देश के सभी 687 जिलों के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला की भी शुरुआत की गई है।
6: तो अभी आपने देखी है हमारी विशेष रिपोर्ट, और अब आइए कार्यक्रम में विचार विमर्श में जो सवालों का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे, ये जो रिपोर्ट अभी हमने यहाँ पर देखी है और जो एक स्कीम की जो एक बात की गई है इसमें, इससे पशुपालकों को कितना फायदा पहुंच सकता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना क्या है और कैसे पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं।
8: देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली दफे सरकार ने जो है पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 एक बहुत बड़ी स्कीम, दो तीन स्कीमों का उन्होंने घोषणा करी और उसका इनॉग्रेशन किया उस स्कीम्स का, जिनका सीधा फायदा हमारे पशुपालन व्यवसाय को और जो पशुपालक हैं हमारे देश के उनको बहुत ही मिलने वाला है। ये जो मुख्य थी कि जो हमारे पशु हैं, ये बात बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है हमारा देश, और लेकिन अभी उनकी उत्पादकता कम है, तो उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, पशु को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने जो मुख्य जो पशुओं की जो दो बीमारियां हैं खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, ये जो दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से उत्पादन घट जाता है, जिनकी वजह से पशु में बांझपन आ जाता है ब्रुसेलोसिस से, इसके अलावा एबॉर्शन हो जाता है, तो इन बीमारियों से हमारे देश के पशुओं को बचाने के लिए, साथ ही साथ इन दोनों बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए कि ये बीमारियां वर्ष 2025 तक इनका पूरा तरह नियंत्रण हो जाए और वर्ष 2030 तक ये बीमारियां हमारे देश से हमारे पशुओं से बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो इसकी जो है शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को करी। इसके लिए मुख्य रूप से 12,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये दोनों बीमारियों का जो नियंत्रण होता है वो हमारे देश में हम टीकाकरण के माध्यम से करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में उस दिन ये बताया कि प्रथम बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट रखा है और इनका जो टीकाकरण के माध्यम से इन बीमारियों का नियंत्रण करा जाएगा और इनका कंट्रोल होगा 2025 और 2030 में। तो ये जो दो स्कीम्स हैं जिसका फायदा हमारे देश के सभी प्रांतों के, ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या भारत सरकार की है, तो ये भारत सरकार की जो स्कीम जो उन्होंने लॉन्च करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इससे सभी हमारे पशुपालक, चाहे वो मध्य भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों या उत्तर पूर्व भारत के हों, और सभी पशुओं में विशेष रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, तो इस इन व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमें जो है 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और आमदनी दुगनी करने में जैसा हमारे पशुपालक भाई जो प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं कि उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, तो दुगनी आमदनी करने में पशुपालन का जो महत्व है उसको समझते हुए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्कीम जो है पहली दफे भारत सरकार ने लॉन्च करी है, और इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे देश के सभी पशुपालकों को मिलेगा।
6: बिल्कुल, वही बामल जी आपका क्या कहना रहेगा इस बारे में, आप क्या कुछ मुख्य बातें इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या है ये स्कीम और किस तरीके से ये काम करेगी और कैसे जो हमारे पशुपालक हैं वो इससे लाभ ले पाएंगे, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर कि उनकी आय को दोगुना किस तरह से किया जा सकता है इस स्कीम के जरिए, अगर उस नजरिए से देखें तो।
9: जी हाँ, जैसे कि आपने अभी सुना है कि जो भारत सरकार ने जो स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये एक स्कीम टोटल 13,343 करोड़ की है, जिसमें से 12,652 करोड़ जो है सिर्फ एफएमडी के लिए निर्मूलन के लिए दिया गया है, जिसमें अभी ये 5 साल में सरकार का जो उद्देश्य है वो एफएमडी को या मुंह पका या खुर पका रोग को कंट्रोल करना है, उसी के साथ साथ जो ब्रुसेलोसिस, जो जैसे पाठक साहब ने बताया है कि जिसमें बांझपन और गर्भपात होता है पशुओं का, तो उसके कंट्रोल के लिए भी ये स्कीम 5 साल के लिए चालू की गई है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण किया जाए और उसके बाद उसके उन्मूलन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो अब जिसमें आप अगर देखेंगे कि मुंह पका खुर पका जो बीमारी है
6: जी।
9: ये अभी साहब ने बताया, पाठक साहब ने बताया कि इससे जो दूध में कमी आ जाती है, गाय जो भैंस गाय भैंस जो पशु है वो बीमार रहने लगते हैं, इनके प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है, तो जिसके जिसका मतलब है कि पशुओं की जो उत्पादकता है वो कम होती है, तो इनमें अगर हम उसके निर्मल नियंत्रण तो पशुओं में उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। इसमें अगर आप अभी देखें तो भारत सरकार ने ये 100% धनराशि केंद्रीय धनराशि के साथ स्कीम का स्कीम को लॉन्च किया गया है, और जिसमें 51 करोड़ पशुओं को साल में 2 बार टीकाकरण किया जाएगा
6: जी।
9: और इस टीकाकरण से ये फायदा होगा कि जो पशु है अगर इनके साथ एक साथ सबका वैक्सीनेशन किया गया तो इनमें जो प्रतिशक्ति है वो आएगी और इस बीमारी से उनका नियंत्रण किया जाएगा, बीमारी से दूर रखा जाएगा। तो वैसे ही ब्रुसेलोसिस में भी जो बच्चिया है 4 से 8 महीने की जो बच्चिया है उनमें ये अराउंड 36 मिलियन जो बच्चिया है उसमें भी लसीकरण किया जाएगा, वो 5 साल तक चालू रहेगा, इससे जो बीमारी पशुओं से दूर रहेगी उनके बीमारी से बच जाएंगे और जो किसान भाइयों की जो है उत्पादकता पशुओं की उत्पादकता में फायदा होगा।
6: बिल्कुल उमेश सिंह जी, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका की, तो अभी जो हमारे पशु हैं, जो हमारे दुधारू पशु हैं, उनकी क्या स्थिति है खुरपका मुंहपका को लेकर, क्या बहुत तेजी से ये फैल रहा है या फिर अभी तक इस पर कुछ नियंत्रण पा लिया गया?
10: मैं सब किसान भाइयों को इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आप देखें अगर जो भी एफएमडी है ब्रुसेलोसिस है इससे काफ़ी भारी नुकसान होता है, अगर एफएमडी हो जाए तो जानवरों में देखेंगे कि बुखार बहुत हो जाएगा और तुरंत ही उसका दुग्ध उत्पादन कम होने लगेगा और छोटे बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, तो इस तरह से इस बीमारी से काफ़ी नुकसान होता है और इरेडिकेट हो जाए समाप्त हो जाए या रोक हो जाए पूरी तरह से कम आमदनी में नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा किसान भाइयों को। तो इसके ऊपर ये जो परियोजना या जो लॉन्च किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बहुत ही उपयोगी होगा, फायदेमंद होगा और जो उद्देश्य है डबलिंग इनकम का उसमें भारी इजाफा होगा। तो इन पे रोकथाम करना और उसको समय से इसका टीकाकरण करना और समाप्त करना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे देश के लिए, जिससे दुग्ध उत्पादन और आमदनी हमारे किसान भाइयों की बढ़ सके।
8: इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने ये योजना 100% जो है पोषित है, तो जो इसका टीकाकरण होगा किसानों को उसमें कोई पैसा नहीं देना है, उसमें उनको सिर्फ ये करना है कि जहां उनका पशु चिकित्सालय है वहां अपने पशु को ले जाना है और उसका टीकाकरण कराना है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लॉसेज में ये और हो जाता है कि जानवर हीट में नहीं आएगा या दूध घट गया तो इलाज भी कराना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट लॉसेज में चारा नहीं खाएगा, तो इस तरह से जो है पूरा नुकसान होता है पशुपालकों को।
6: जी दास जी, यहाँ पर आपकी भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे स्कीम के बारे में, आपको क्या लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि कितनी कारगर हो सकती है ये स्कीम और कैसे फायदा?
11: ये पहले से स्कीम का नया नाम जो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसको, बट पहले भी ये स्कीम चला था, बट क्या होता था कि पहले क्या होता था 60-40 का रेशियो में चलता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती थी, 40% स्टेट से आता था। उसमें होता है कि ये जब टीकाकरण होता है कि अगर एक भी टीका आप मिस कर जाओगे तो उसको पूरा इराडिकेशन नहीं हो सकता है इसका, तो इसमें क्या 100% सेंट्रली फंडेड है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे राज्य क्या करते थे अपना जो हिस्सा है वो दे नहीं पाते थे या लेट में देते थे, तो उसके वजह से टीकाकरण जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव बीमारी है, मतलब अगर FMD फ्री इंडिया हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है इन टर्म्स ऑफ मीट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि जब तक डिजीज है आपका आपका यील्ड में इंपैक्ट करता है और आपका जो ग्लोबल मार्केट और इवन डोमेस्टिक मार्केट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मीट और मिल्क।
6: बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की लक्षण जो है वो उसमें दिखाई देते हैं, मुंह के अंदर आपने बताया छाले होते हैं, खुरों में किस तरीके के लक्षण होते हैं और क्या उपचार है, कितने समय में जो है वो इसका टीकाकरण करवाना चाहिए हमारे किसानों को?
8: देखिए, जब जैसे ही जो खुरपका मुंहपका का पहला लक्षण जो है हमारे पशुपालक देखेंगे कि अगर आपका गाय और भैंस में मुख्य रूप से बीमारी है और जो भेड़ बकरी हैं उनके अंदर इतने ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं, तो आप पहला देखोगे कि आपका जो पशु है वो उसको बुखार हो जाएगा, सुस्त रह जाएगा और उसका दूध उत्पादन जो है वो घट जाएगा। तो जब वो सुस्त हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो आप देखोगे कि वो चारा कम खा रहा है या पानी नहीं पी रहा है। साथ ही साथ अगर उसके मुंह, जैसा मैंने बोला और इसके नाम में भी है कि इसके मुंह में छाले हो जाते हैं और उसके मुंह से जीभ आप देखोगे कि उसकी लार निकलती है, लार टपकती रहती है मुंह से, और खासकर जब हम मुंह का परीक्षण जब हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो मुंह खोल के उसको देखेगा तो लार टपकेगी, लगातार लार टपकती रहती है। साथ ही साथ उसके जब खुर देखें, क्योंकि जो खुर वाले जानवर होते हैं बीमारी उन्हीं की है
6: जी,
8: तो जो खुर में देखोगे तो खुर के बीच में भी आप देखोगे कि उसमें छाले हो जाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे, और तो उससे देख के किसान पता कर लेता है। साथ ही साथ जो दूध दे रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि तुरंत दुग्ध उत्पादन घट जाएगा, चारा खाना बंद कर देगा, बुखार हो जाएगा, तो ये इसके मुख्य लक्षण है। अब हम करें क्या, तुरंत अपने पशुपालक जो जहां आपका वेटनरी हॉस्पिटल है वहां जरूर जाएं, किसी वैसे बिना वेटनरी डॉक्टर को न दिखाएं और अपना इलाज शुरू न करें। साथ ही साथ क्योंकि ये संक्रामक रोग है, गांव में अगर एक पशु को भी हो गया है तो जैसा
6: अभी
8: सब में फैल जाएगा, इसीलिए जैसे अभी संदीप जी भी कह रहे थे और इस स्कीम के अंदर ये बात है कि भारत सरकार ने इसको 100% फंडिंग इसलिए किया है कि ये जिस तरह से हमने पोलियो उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया और आज हमारा देश पोलियो से वो है मुक्त है, तो वही सेम उस तरह की अप्रोच हमको जो है खुरपका मुंहपका के लिए, तो आप अपने पशु को पशुपालकों को उसके देखें, उसको अलग कर दें। अगर आपके पास 6 पशु हैं, 6 में से एक पशु को ये लक्षण आ रहा है तो उनको अलग कर दीजिए और इसका इलाज भी साथ में कराएं, जो लोकल जो जो जो लीजन्स बन गए जो वो आ गए हैं। साथ ही साथ टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो इसका जो टीका है वो साल में 2 बार लगता है, खुरपका मुंहपका का जो टीकाकरण का कार्य सरकार का है वो 2 बार लगाया जाता है, तो एक जैसे बरसात के दिनों में जो है ना, और आजकल ही ये जो समय की जो मौसम चल रहा है इस समय में खुरपका मुंहपका रोग बहुत होता है
6: जी।
8: तो एक चीज ध्यान जरूर देनी है कि हमारा एक भी गांव का एक भी पशु इसके बिना टीकाकरण से न बचे, यानी अगर आपके पास 50 पशु हैं, आपके पास 2 पशु है, आपके पास 1 पशु है, उसका टीकाकरण निश्चित रूप से कराएं।
6: जी बिल्कुल। बंबल जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने यहाँ पर खुरपका मुंहपका के संबंध में बहुत ही विस्तार से जो है पाठक जी से जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तभी से जो है वो टीकाकरण शुरू करवा दिया जाता है, तो क्या इस तरीके की कोई भी टीकाकरण क्या पशुओं के अंदर भी लागू होता है कि अगर जब कटरा कटनी हो तो उसी दौरान अगर उनको वैक्सीनेशन दे दी जाए तो क्या पता ये बीमारी आगे फैले ही ना, क्या बताएंगे इसमें आप?
9: जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये जो बीमारी है जैसे मुंह पका खुरपका जो बीमारी है, ये छोटे बच्चों से तीन बच्चा बछड़ा जो 3 या 4 महीने की बच्चियाँ जो है वहाँ से हम दिया जाता है। और ये स्कीम की तो विशेषता ही ये है कि जैसे संदीप जी और पाठक जी ने बताया कि इसमें एक तो हम जो जानवर है पशुए है उनको इससे एक टैगिंग दिया जाएगा जो यूनिक आईडी जिसको पशु आधार बोलते हैं। जैसे बछड़िया में अगर 4 महीने के इसमें हम वैक्सीनेशन करें तो इनको टैगिंग से चिन्हित किया जाएगा और वो जो है उनकी सब पूरी इन्फॉर्मेशन जानवरों की छोटे बचपन से वैक्सीनेशन डेट से लेके ये सब उसमें एक हमारा सॉफ्टवेयर है इनाफ पशु उत्पादकता सॉफ्टवेयर जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका फायदा होगा कि जब दूसरी बार आपको वैक्सीनेशन करना है तो ये पता चल जाएगा कि इसका कब 6 महीने बाद ड्यू है। उसी तरह से जो उनको पशुओं के जो लसीकरण टीकाकरण करने के बाद इनको एक वैक्सीनेशन कार्ड भी दिया जाएगा, एनिमल हेल्थ कार्ड जिसका नाम है, ये भी दिया जाएगा। ये पशुपालक अपने पास रखेंगे और इसमें उनकी सब पूरी जानवर की डिटेल रहेगी। तो उसे जो नेक्स्ट राउंड है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है ये कैंपेन मोड में किया जाएगा, जैसे 21 से 30 दिन के बीच में जो भी गांव है उसमें किया जाएगा, सो दैट सब पूरे जो एनिमल है एक साथ उनका टीकाकरण किया जाए। और पशुओं को दूसरा टीकाकरण करने के लिए इसलिए जो डेट जो है वो पशुपालकों के साथ वैक्सीनेशन कार्ड में भी दिया जाएगा।
5: किसान साथियों, अभी आपने पशु को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, मुंहपका और खुरपका से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटा फील्ड 90.8।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: किसान भाइयों, ब्रुसलोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। आप देखेंगे अगर ब्रुसलोसिस हो गया, चाहे वो कहीं भी बुल में ज़्यादातर, तो वो बुल अगर पॉजिटिव है, गाय भी है, तो बुल को पॉजिटिव है तो किसी भी तरह से आप उसको आइसोलेट कर दें, उसको कभी भी ब्रीडिंग के लिए उपयोग में ना लाएं, ना उसका सीमेन यूज़ करें, क्योंकि जब भी अगर इस तरह से ब्रीडिंग हो गई तो उसकी भी जो भी बच्चा होगा कुछ ही दिनों में जो वो एबॉर्शन हो जाएगा। और इस तरह की ये ब्रुसलोसिस बीमारी कॉन्टेजियस बीमारी है, इससे बचाव करने के लिए आप इमीडिएट उसको अलग कर दें, उसको अपने हर्ड में ना रखें, और ये लगातार इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ब्रुसलोसिस से बच सकते हैं। एक बार पॉजिटिव हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा हर्ड नहीं है, उसमें से उसको अलग रखना भी बहुत एक मुश्किल टास्क होगा, समस्या होगी। इसलिए हर जानवर का टीकाकरण होना चाहिए। ब्रुसलोसिस एक गंभीर बीमारी है, टीकाकरण ही एक अच्छा उपाय है, माध्यम है जिसके द्वारा आप इसका बचाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं एक और खास रिपोर्ट।
3: हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। ऐसे में कृषि और पशुपालन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से न केवल ये क्षेत्र सशक्त बनेंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए, इसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को समय की जरूरत बताया। हमारे गांव से इस प्रकार की नई खोजें की जाएं, इसके लिए हाल ही में स्टार्टअप ब्रांड चैलेंज की शुरुआत भी की गई है। इसके जरिए युवाओं की अवधारणाओं को आगे ले जाने और उनके लिए समुचित निवेश जुटाने के लिए भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर तो तैयार होंगे ही, साथ ही पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की पहचान भी बनी रहेगी।
2: तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। पाठक जी, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ब्रुसलोसिस के क्या कोई लक्षण है जो जिसको दिखाई देने पर जो हमारे पशुपालक हैं वो जिससे पहचान कर सकें कि जो हमारा पशु है वो ब्रुसलोसिस से ग्रसित है।
4: देखो, ब्रुसलोसिस का जैसा अभी डॉक्टर उमेश ने बता रहे हैं कि विशेष रूप से इसके दो मुख्य लक्षण आते हैं कि एक तो अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है जो है पशु में, दूसरी बात यह है कि जो खासकर जो बुल है जिसको हम सीमन कलेक्शन के लिए प्रयोग में लाते हैं तो उस बुल के अंदर इनफर्टिलिटी आ गई है। और ये जो ब्रुसलोसिस बीमारी है, सबसे बड़ी इसकी विविधता यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो जो पशु है, चाहे वो मादा है चाहे वो नर है, वो संक्रमित रहेगा। और वो अगर संक्रमित है, अगर आपके पंचायत लेवल पे अगर कोई बुल है, सांड जैसे पहले लोग गांव में रखते हैं कि भाई एक सांड रखा और वो गांव में ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करते थे, तो वो परमानेंट ही संक्रमित बना रहेगा। तो आप ये देखोगे कि इसका जब टेस्ट करेंगे तो जैसे ये निश्चित रूप से अब आवश्यक हो गया है कि आप जब भी जानवर चाहे मेले से खरीदें या आपने किसी साथी का से जानवर परचेज करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका भी कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही ब्रुसलोसिस का कोई इलाज नहीं है। और मुख्य रूप से जो मुख्य सिम्टम है इसके, या तो गर्भपात हो जाएगा या इनफर्टिलिटी हो जाएगी उसके अंदर, मेल के अंदर। तो इनका टेस्ट जरूर करा के रखें। ये जो बीमारी है ब्रुसलोसिस बीमारी, सिर्फ आपके पशुओं की बीमारी नहीं है, इससे ये बीमारी हमारे पशुपालकों को भी हो सकती है। इनको हम जूनोटिक डिसीजेज बोलते हैं। तो ये जूनोटिक बीमारियां कौन सी हैं जो पशुओं से मनुष्यों में हो जाती हैं, और इसका इलाज सिर्फ जो है टीकाकरण है
2: जी।
4: तो टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने जो ये स्कीम करी है, इसका लाभ हमको उठाना है, हमारे पशुपालकों को उठाना है।
2: बिल्कुल बंबल जी, यहाँ पर यही मैं जोड़ना पहले भी चाह रही थी, क्योंकि कई बार हम लोग भी गांव में जाते हैं तो हमारे से कई जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, वो कहते हैं कि हमें तो इस योजना के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं है, हम इस स्कीम का लाभ कैसे उठाएं, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान हैं, चाहे पशुपालक हैं, सरकार की जो जिस तरीके की ये स्कीम आ रही है जिनका ये लाभ ले सकते हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको इन तक जानकारी पहुंचे? क्या किसी तरीके की गोष्ठियां की जा रही हैं, किसान मेले में किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट्स की जाती है? किस तरह से किसानों तक ये ज्यादा से ज्यादा जो जानकारियां हैं वो पहुंच पाए योजनाओं की?
5: ये जो योजना पशु रोग, राष्ट्रीय पशु रोग निदान कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई है, ये इसमें 13,333 करोड़ की जो टोटल स्कीम है, इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, जन जागृति प्रोग्राम के लिए खास विशेष रूप से महत्व दिया गया है। जैसे अभी ब्रुसेलोसिस की बात चल रही थी, इसमें भी एक जो हमारी स्कीम का जो विशेष भाग है वो है कि 4 से 8 महीने के बच्चियों को, जो फीमेल बोवाइंस है, मतलब गोवंशीय जो कैटल और बफेलो की जो फीमेल है बच्चियाँ हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसे अगर ये 5 साल तक वैक्सीनेशन उनको किया जाए, मतलब हर साल एक ही टीका देना है हर बच्चियों को, तो ऐसे 5 साल अगर ये ऐसे कार्यक्रम रहा जाए तो टीकाकरण किया जाएगा, तो एक पूरा हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी और धीरे धीरे इस रोग से ये जो हमारे जानवर है इससे मुक्ति पाई जाएगी। और अवेयरनेस प्रोग्राम में अब हर गांव में, हर विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी योजना की गई है। हर जगह पैम्पलेट हो, लीफलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सभी के द्वारा इनको जो है जन जागृति की जाएगी।
2: बिल्कुल।
4: और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब 11 सितंबर को जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उसी समय जितने भी हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपने कहा ना जानकारी कैसे किसानों, तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी संगोष्ठी की जा रही है, और उनको कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि सीधे किसानों से जुड़े होते हैं, वहां पर हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ होते हैं, तो सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके बारे में सूचना दी जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोग्राम करे जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ये नई बीमारी जुड़ी है ब्रुसेलोसिस, बीमारी नई नहीं है लेकिन ये परियोजना पहली दफा जुड़ी है। डॉक्टर बम्बल बता रहे हैं कि ब्रुसेलोसिस पहले हमारे नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं थी, तो इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा गया है।
2: डॉक्टर दास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
6: मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये दोनों प्रोग्राम में ये पूरा जो टारगेट है कि पूरा 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर छूट जाए उसका दिक्कत हो सकता है। बट प्रॉब्लम में अभी प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि अभी जब आंकड़ा ये बता रहा है कि इसमें करीब 100 करोड़ डोजेस चाहिए, उसमें जो अवेलेबिलिटी है ओवर 50 करोड़ का है, तो उसका जो मेडिसिन है जो दिया जाएगा उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसको टाइमली प्रोडक्शन, टाइमली सप्लाई, वो बड़ा की होगा। अब कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा की है, बट आफ्टर दैट कम्युनिकेशन लेने के बाद भी अगर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा लोकल लेवल पे कि ये टाइमली दिया जाए, क्योंकि अभी देख रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ये दोनों जो डिजीज के लिए 2-3 कंपनी इसको मैन्युफैक्चर मेजरली करते हैं इंडिया में, तो उसको सप्लाई कैसे किया, उसका टाइमली सप्लाई, डिमांड, ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक भी वैक्सीनेशन छूट जाए तो पूरा पूरा जो जो जो डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म वो खत्म हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अगर 2025 तक ये डिजीज फ्री हो जाता है, FMD फ्री हो जाता है इंडिया, हमारे एनिमल एक्सपोर्ट, एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जो हमारा FMD बिकॉज ऑफ FMD एग्जिस्टेंस वो लेते नहीं हमारा प्रोडक्ट्स, तो वो बड़ा एक बूस्ट देगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल एनिमल इसके लिए
2: जी।
6: तो ये मैं दोनों चीज बोलना चाहता
2: हूँ। बिल्कुल,
5: इससे ही मैं जरा उनसे थोड़ा सपोर्ट ये करना चाहूंगा कि जो संदीप जी बोल रहे थे कि अभी क्योंकि ये जो दोनों भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ये जैसे इन्होंने पहले बताया कि पहले हमारी स्कीम थी, बट क्योंकि अब सब पूरे जानवर को, जैसे जो जो अफेक्ट, गाय, भैंस, भेड़ बकरी सुअर ये सबको मिला के 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट दिया गया है, तो ये इस प्रोग्राम की जो विशेषता है, तो इसलिए ये कैंपेन मोड में किया जाएगा और ये सरकार ने या जो राज्य सरकार है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये हमारे स्कीम में पूरी व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन को कैसे रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज कैसे कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए और इसकी अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सफिशेंटली हो और ये प्रोडक्शन अभी सफिशिएंट है और इसीलिए ये जैसे हम 3.6 करोड़ ब्रुसेला का वैक्सीनेशन होना है तो ये वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल है।
2: तो बिल्कुल यहाँ पर बंबल जी आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि फिर जो हमारे किसान हैं कई बार उनको ये भी दिक्कत आती है कि अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं दुधारू पशुओं की और कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि ये सीमन की भी जो बात है वो भी की जाती है कि अगर अच्छा वीर्य जो है वो मिल जाए तो उससे भी जो नस्ल है उसको जो है वो बढ़ावा मिलता है, अच्छी नस्ल भी प्राप्त होती है, तो ये तमाम जो सवाल हैं ये कई बार हमारे जो पशुपालक हैं उनके जहन में आते हैं, क्या जवाब देंगे इनका?
1: तो डेयरी व्यवसाय है ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी आमदनी किसान भाइयों को होती है। कई बार देखें आप कि कृषि से आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पशुपालन से होती है। जो पशुपालन के अंतर्गत आप एक अच्छे गुणवत्ता वाले नस्ल का चुनाव जरूर करें, वो गाय में है, हमारी देसी नस्लें हैं जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, रेड सिंधी है लेकिन संख्या बहुत कम है, तो इन जो नस्लें हैं इनको आप चयनित करें, ले आएं और अपने यहाँ पालें। इसके अलावा आप देखें कुछ HF संकर गाय भी हैं, वो भी अच्छी हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन है
2: जी।
1: लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको अपने यहाँ ले आएं, पालें। कई बार किसान भाई देखेंगे कि आप साहिवाल लेना चाहते हैं लेकिन साहिवाल आपको अच्छी नस्ल की उपलब्ध नहीं हो पाती, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी कोई गाय है जिसमें आपको लगता है कि इसको ग्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है क्रोमोनाति जिसमें आप साहिवाल का सीमन लगाएं, तो जो आपकी एक देसी गाय है जब सीमन लगाएंगे तो जब बछिया आएगी वो 50% साहिवाल की हो जाएगी। इसी तरह से 3-4 जनरेशन जब लगातार साहिवाल का सीमन लगाएंगे तो एक आपको साहिवाल नस्ल की गाय पैदा हो जाएगी, तो इस तरह से भी आप बढ़ावा कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जाएं, आप देखें जो हिसार के आसपास, सिरसा के आसपास राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर, वहां पे भी काफी मात्रा में इस समय साहिवाल गाय उपलब्ध हैं किसानों के पास, मैं गया भी था और देख के भी आया
2: जी।
1: आप देखें कि पुणे जैसा शहर और बारामती, मैं अभी अभी गया था वहां पे भी काफी इसी क्षेत्र से ले जाकर के लोग वहां पे साहिवाल पाल रहे हैं, तो साहिवाल सवाई माधोपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है उधर भी जाएं, तो वहां से भी आप चयनित करके साहिवाल ला सकते हैं। इसी तरह से गिर नस्ल है सौराष्ट्र गुजरात की, लेकिन अजमेर और उसके आसपास जो टोंग डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर है, वहां पे भी बहुत संख्या में इस समय गिर उपलब्ध है। अच्छी नस्ल की अच्छी गाय जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में उपलब्ध है, वहां से भी ले आकर के आप पाल सकते हैं। रही बात ये थारपारकर आप राजस्थान से, राठी भी राजस्थान से ला सकते हैं। किसान लाने के बाद देखें कि अगर उनकी गाय गर्मी में आती है तो उनको उच्च गुणवत्ता का सीमन उपलब्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ अपने संस्थान में केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत हम इस समय 3 देसी नस्लों, गिर, साहिवाल और कानकरेस, तीनों के नस्लों का जो बुल का सीमन हमारे पास उपलब्ध है अच्छे गुणवत्ता का है, क्योंकि हमारे पूरे देश में हम लोग परियोजना ICR के माध्यम से चला रहे हैं और वो बुल टेस्टिंग के ऊपर ही है। अच्छे अच्छे बुल को हम उसको बछिया के ऊपर ही उसको टेस्ट करके हम उस बुल को सेलेक्ट करते हैं, तो उनका सीमन है और बहुत ही अच्छा सीमन है, वहां से भी उपलब्ध हो सकता है
2: जी।
1: इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाबूगढ़, आप बाबूगढ़ जो है वहां पर, वहां से भी ला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सीमन स्टेशन है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऋषिकेश का सीमन, ऋषिकेश में है सीमन स्टेशन, वहां से भी ला सकते हैं। आप देखें आजकल किसान भाई सेक्स सीमन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और देने की आवश्यकता भी है। इन दोनों जगह मशीनें भी उपलब्ध हो गई हैं और यहाँ पर सेक्स सीमन के ऊपर भी कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी ही

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आप लगातार पशुपालन को लेकर, पशुओं की जो मुंहपका और खुरपका की बीमारी को लेकर, साथ ही अच्छे नस्ल के पशुओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सुन रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: पर आपके पास आना चाहूंगी, डेयरी स्टार्टअप की भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जो है ये अच्छा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं उनको इससे जोड़ना काफी जरूरी है। धीरे धीरे हमारे जो युवा हैं उनका रुझान भी अब कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार रहेगा?
2: बिल्कुल, हमारे युवाओं को, विशेष रूप से जो हमारे युवा डेयरी को अपना व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, और जब मैं युवा की बात करता हूं तो उसमें दोनों ही हैं, पुरुष और महिलाएं, और डेयरी तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे बढ़ के आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 11 तारीख को वहां ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम मथुरा में, तो उन्होंने स्टार्टअप की बात करी थी और उन्होंने ये कहा था कि, एक उदाहरण दिया था कि जैसे पशुपालन के क्षेत्र में या डेयरी का जो व्यवसाय है, हमारे पास चारे की बड़ी भारी समस्या होती है। हम सब जानते हैं कि जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु से पूरे वर्ष ज्यादा दूध मिले, लगातार दूध मिले, दूध कम न हो, तो आवश्यक यह है कि साल भर हर सीजन में उनको हरा चारा उपलब्ध हो, ये पहली आवश्यकता है। डॉक्टर उमेश जी जो कह रहे हैं वो तो है ही, फला है कि आपकी जो ब्रीड है बढ़िया होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से प्योर ब्रीड हो, साथ ही साथ चारा, और तीसरा बीमारी, डिसीज कंट्रोल। तो चारे के बारे में उन्होंने एक उदाहरण दिया छोटा सा कि एक ऐसा एक है जहां युवा अपना नया जो है कोई कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि चारा उत्पादन को बूस्ट करना है, या जैसे उन्होंने पॉलीथीन यूज ऑफ पॉलीथीन का मिस यूज ऑफ पॉलीथीन इन हमारे जानवरों में, उन्होंने वेलकम एक दिन उन्होंने ऑपरेशन भी होता हुआ मथुरा वेटनरी कॉलेज में देखा कि इस तरह से पॉलीथीन जो है पशुओं के पेट में जाके उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो स्टार्टअप का जो उनका नारा है, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उसको जो आह्वान किया है युवाओं को, और एक अच्छी बात यह है, आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे युवा जो IIT से डिग्री लेके, IIM से डिग्री लेके, वो डेयरी के व्यवसाय में आ गए हैं, क्योंकि डेयरी में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं इसमें, और वैज्ञानिक, लेकिन आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक तरीके से डेयरी,
1: वैज्ञानिक
2: विधि से करा जाए, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि, और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए युवाओं को, हमारा जो प्रधानमंत्री जी की जो ये स्कीम है इसका फायदा पशुपालकों को उठाना चाहिए, और जो डेयरी में ज्यादा से ज्यादा युवा है इसका फायदा भी हमको उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल बंबल जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे और इस योजना के बारे में और क्या हमें जो है बता सकते हैं, क्या रहेंगे आपके विचार?
3: जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर को ये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था, जिसमें जहां 50% के नीचे जहां AI का कवरेज है, ऐसे 6-6 जिले जो है उनमें ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें इन 8 नस्ल की जो जानवरों से, मतलब सांड से, इनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। उसे 600 जिलों में जो है 100 विलेजेस जो है, एक हर जिले में 100 विलेज का चयन किया गया है, और उसमें 200 जानवर को ये ऐसे कवर किया जाएगा। तो ये जो उनकी जो न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है, जो सांड का जो वीर्य का यूज किया गया है, वो एकदम अच्छे नस्ल का है, 3000 के ऊपर ये है देसी गाय का। तो इसके वजह से जो है किसानों को, जो उनके जो गाय और भैंस को जो AI किया जाएगा, वो अच्छे नस्ल से होगा, और ये उत्पादकता, उसके जो बच्चे नस्ल तैयार होगी वो अच्छे उत्पादकता की तैयार होगी। इसी के साथ साथ जो अभी पाठक जी बोल रहे थे, स्टार्टअप चैलेंजेस का जो किया गया है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ चैलेंजेस जो डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में है, वो चिन्हित किए गए हैं, जैसे दूध प्लास्टिक के जो बैग्स है उसका यूज, उसका अल्टरनेटिव क्या है, और कुछ ये जो मिल्क अडल्ट्रेशन है उसमें जो चैलेंजेस है उनके लिए स्टार्टअप चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज किया, अनाउंस किया गया है। ये ट्रेसिबिलिटी है, देन नस्ल ब्रीड जो इम्प्रूवमेंट, और जो चारा का जो है पोषण पोषण आहार है, इसके ऊपर भी चैलेंज ग्रैंड चैलेंज को चिन्हित किया गया है। ई कॉमर्स है, यू जो वाणिज्य है, तो ये जो हमारे छह पॉइंट जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए उसके ऊपर काम किया जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर उमेश, आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि डेयरी व्यवसाय को लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से जो है वो हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकता है, और साथ ही साथ युवा जो है वो इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं।
4: किसान भाइयों, हमारे युवक, आप डेयरी व्यवसाय को बहुत आराम से अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें कि 10, 12, 15 जो भी गाय आप अगर चयनित करते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमेशा ही फायदा होगा, नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। आप इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, वो इसके लिए सहायता करता है। हमारे जो युवा वर्ग है वो इनसे संपर्क स्थापित कर सकता है, उनसे आपको लोन भी प्राप्त होता है, और इस व्यवसाय के लिए आप जो है आगे बढ़ करके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आप स्वतः रोजगार अपना पैदा कर सकते हैं। आपको निसंदेह मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा फायदा है। अभी हमारे डॉक्टर पाठक साहब कह रहे थे कि कुछ इंजीनियर हैं, कुछ आईएम, मेरे पास कुछ लोग खुद आए, बोले कि सर हम डेयरी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, आप अच्छे नस्लों का और अपनी जानकारी दें। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लोग भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उनको करना क्या है, तीन चार चीजों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी इस व्यवसाय में आए तो सबसे पहले ये देखें कि आप बाजार क्या है, क्योंकि जब भी मार्केट के आसपास आप व्यवसाय करेंगे तो आपका दूध का उत्पादन जो होगा उसका उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है
1: जी।
4: अगर अच्छा मूल्य नहीं मिला आपको तो आपका व्यवसाय फायदेमंद नहीं रहेगा। इसी के साथ आप केवल यहीं पे दूध के लिए नहीं पाल रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबर वर्मी कंपोस्ट भी उपयोग में आएगा, आप इसी के साथ घी बनाएं, मट्ठा आपका अतिरिक्त बिकेगा, 20-25 रुपया आजकल मट्ठा बिक जा रहा है। दूध की तो आप ये देखें कि 1000 छोड़ दीजिए, 2000-2500 में भी इस समय देसी घी मार्केट के अंदर बिक रहा है, अगर अच्छा घी है तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, उन सब के ऊपर आपको विचार करना होगा। इसी के साथ आपको इस व्यवसाय में आना पड़ेगा और आप क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, दूध स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें, आप उसमें भी देखेंगे 1-2 रुपया आपको ज्यादा ही पैसा मिलेगा।
1: बिल्कुल,
4: तो मिल्किंग मशीन हो, अच्छा आपका सेटअप हो, उसी के अंदर वो दूध चिलिंग में चला जाए, चिलर्स में चला जाए, आप इस तरह से अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करते हैं, मार्केट के अंदर देते हैं, तो 60-70-80 रुपए में भी इस समय देसी गाय के दूध मार्केट में बिक रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा और डबल इनकम होने में निसंदेह कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, डबल इनकम जरूर होगा।
1: बिल्कुल संदीप जी, आपसे एक टिप्पणी लेना चाहेंगे इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं, डेयरी व्यवसाय किस तरह से जो है वो किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार?
5: देखिए, डेयरी व्यवसाय ऐसा है कि उसमें इंस्टेंट इनकम मिलता है, अनलाइक अदर क्रॉप जैसे राइस व्हीट, उसको ग्रो करने के बाद फिर बेचने के बाद ही उनको मिलता है, एक इंस्टेंट देता है। और आपको आंकड़ा बता दूं कि मिल्क, जो वैल्यू ऑफ मिल्क है सबसे ज्यादा, वो वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज मोर देन राइस व्हीट का प्रोडक्शन जितना होता है। तो मिल्क एक बहुत इंस्टेंट देता है और बहुत बड़ा बाजार है अभी, क्योंकि अभी भी लार्ज चंक ऑफ मार्केट्स अनऑर्गेनिक सेक्टर के पास है, दूध वाला के पास है। तो सेफ मिल्क, पैक्ड मिल्क, फ्रेश मिल्क सप्लाई करने के लिए जो बहुत सारे स्कीम्स है, नाबार्ड भी स्कीम चला रहा है, नाबार्ड का स्कीम से, तो यंगर जनरेशन बहुत आ रहा है। आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स अप्स हो रहा है, एनसीआर दिल्ली में देखोगे बहुत सारे न्यू मिल्क स्टार्टअप्स आ चुका है, बट बाजार को देखना पड़ेगा एंड बाजार इज ग्रोइंग स्टेडिली। आप देखो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव देखिए, अमूल देखिए, उनका स्टेडिली दे आर ग्रोइंग बेसिकली, तो द बेस द एक्सपेंशन काफी तेज भी में हो रहा है। और मैं जैसे पहले ही कहा कि मिल्क इंस्टेंट इनकम देता है, तो मिल्क, डेयरी और वो एलाइड सेक्टर, वो जो हेल्प करेगा फार्मर्स इनकम को डबल करने में, मैं समझता हूँ।
0: जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो पशुपालन में जो दूध उत्पादन का जो बाजार है वो काफी फलफूल रहा है, ये दिन प्रतिदिन ऊपर ही इसका जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ोतरी की ओर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो किसान साथियों, आने वाले समय में भी हमें दूध का उत्पादन की करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई जो दूध पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेना चाहता है, साथ ही दूध पालन के इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है वह इस व्यवसाय में आ सकता है, जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको बढ़ावा देते हुए कहा है कि हमारा जो पशु है, पशुधन को हमें संभाल के रखना चाहिए, इसकी हमें रखवाली करने की ज़रूरत है, साथ ही इसका हम बीमा करवा सकते हैं, इसका समय समय पर टीका लगवा सकते हैं, और जो पशुओं की पहले जो पशु को भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते थे उससे कहीं ना कहीं किसान भाई का काफ़ी नुकसान हो जाता था, लेकिन अभी पशुओं के टीके उपलब्ध हैं, पास में हमारे जो पशुओं के लिए चिकित्सा अवेलेबल है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ किसान साथियों यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो चांटियाभील 90.8 FM के साथ छवा की आवाज़।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको नितिन राज जी से, जो कोचिन से हैं। बाकी की बातें हमेशा की तरह हम उन्हीं से करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को नितिन राज जी के गाए हुए इस गीत से।

0: बेहद खूबसूरत सिंगिंग, बढ़िया गायकी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे सुनने वाले और मैं भी आपके सभी गीतों को बहुत बेसब्री से सुनना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम को और मैं आपसे पूछना चाहूंगा नितिन जी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, उस जगह के बारे में थोड़ा कुछ बताइए।
1: मेरा जन्म स्थान बड़ौदा है, गुजरात में। बड़ौदा एक हिस्टोरिकल जगह है और वहाँ पर अंशुमन गायकवाड़, किरण मोरे, नयन मोंगिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या जैसे नामी क्रिकेटर्स बड़ौदा के ही हैं।
0: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नितिन जी की आवाज में ये गीत।

0: थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया नितिन जी। नितिन जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, उस जगह के बारे में क्या खास है?
0: अभी मैं कोचीन में रहता हूँ, केरला, और केरला को नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है और इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पैराडाइज इन इंडिया। दो पैराडाइज होते हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा केरला, ऐसे माना जाता है, और इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी।
1: अमेजिंग। केरला मतलब गॉड्स ओन कंट्री। आइए दोस्तों, सुनते हैं नितिन जी की आवाज में ये गीत।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नितिन जी। तो नितिन जी, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं?
2: मैं केएमएलएम इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लीडर हूं और मैं 2020 से उस कंपनी में काम करता हूं।
1: तो लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है नितिन जी की आवाज में ये एक और गीत।

0: बहुत बढ़िया नितिन जी, बहुत बढ़िया। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नितिन जी कि गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से गा रहे हैं आप?
1: मैं 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, और क्योंकि मेरे फादर भी गाते थे तो वो गाते थे, मैं सुनता था, और धीरे धीरे मेरे को, मैं जब गाता था तो मुझे लगना शुरू हो गया कि नहीं, मैं गा सकता हूँ। और फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नितिन जी। तो आइए दोस्तों, पेशे खिदमत है एक और गीत नितिन जी की ही आवाज में।

0: भाई वाह, क्या बात है। तो नितिन जी, अगला सवाल ये है कि आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह का संगीत? गाने, फिल्मी गाने, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या क्या?
1: मेरे को फिल्मी संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत और गजल्स गाना पसंद है। और ज़्यादातर मैं क्लासिक, सेमी क्लासिकल टाइप के गाने ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
0: तो लीजिए दोस्तों, सुने नितिन जी का ही गाया हुआ ये गीत।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: बहुत खूबसूरत नितिन जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके पसंद के गायक या गायिका कौन है?
2: वैसे तो काफी सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनको उनमें से एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर हर सिंगर का अपना अपना क्वालिटी होता था। जैसे किशोरदा का अपना क्वालिटी था, रफ़ी साहब का अलग क्वालिटी, यशुदास जी का अलग क्वालिटी, मनाडे जी का, और वैसे ही मुकेश जी का। फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक ही कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब सबसे अच्छे लग रहे थे मुझे, जहाँ तक संगीत का सवाल है। मैं ज़्यादातर रफ़ी साहब को फॉलो करता था और करता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक है रफ़ी साहब, हर हर गाने का अंदाज बहुत निराला अंदाज था उनका, और सबसे बहुत नेक इंसान थे रफ़ी साहब, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें मैं उनके बारे में पढ़ चुका हूँ, तो काफ़ी नेक इंसान थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो रफ़ी साहब को सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ मैं इसमें।
1: तो फिर लीजिए दोस्तों, नितिन जी का ही गाया हुआ ये गीत।

0: बहुत खूब नितिन जी। तो नितिन जी, अगला थोड़ा मुश्किल सवाल, आपके पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: सबसे ज्यादा पसंद वाला सॉन्ग कहा जाए तो काफी दिक्कत है कहने में, बट मैं कहूँगा रफी साहब ने जो गाया था नवकल्पना नवरूप से, मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें एक सेमी क्लासिकल टच बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा रिदम वाला और अच्छा ट्यून वाला गाना मुझे लगा।
0: तो लीजिए दोस्तों, मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ इनका सबसे पसंदीदा गीत ही सुनते हैं इन्हीं की आवाज में।

0: अरे वाह, क्या गायकी है। तो नितिन जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने खाली वक्त में क्या करते हैं आप, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं?
1: हॉबीज तो गाना गाना अच्छा लगता है, और मैं काफी मोटिवेशनल बुक्स रीड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो मोटिवेशन को रिलेटेड है, और मैं चाहता हूँ कि

0: तो नितिन जी, मैं आपसे अब गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने जैसे सिंगर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज बताइए उन्हें।
1: रियाज करिए। और नंबर दो, एक सिंगर का सबसे बड़ा उपहार ये होता है जब वो गाता है कि ऑडियंस में से तालियां बजनी चाहिए। बस ये दो चीज अगर आपने कर ली तो समझो कि आपने अच्छा किया है, और अपने स्किल्स को और बढ़ाते जाइए, क्योंकि संगीत कभी खत्म नहीं होता, इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट, सो यू कीप ऑन लर्निंग, दैट इज द प्रोसेस। तो इस तरह से अपने आप को एक गुड सिंगर और एक आउटस्टैंडिंग सिंगर, सो एक गुड सिंगर से आउटस्टैंडिंग सिंगर बनने की कोशिश करिए।
0: वेरी नाइस नितिन। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं नितिन जी से।

0: बहुत बढ़िया सिंगिंग। नितिन जी, हमारे सुनने वाले जो आज आपको सुन रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए क्या संदेश है आपका?
1: सारे सुनने वालों को मुझे एक ही बात कहनी है, बस प्रोत्साहित करिए, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। रेडियो तात्या बिल के सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: भाई वाह, बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, नितिन जी की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में थे नितिन राज जी कोचीन केरला से। आपका बहुत बहुत आभार है नितिन जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे सुनने वालों को और मुझे भी आपके गीत सुनकर बेहद बेहद मजा आया। थैंक यू सो मच।

मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। सोनाली जोशी जी आज के कलाकार के इस एपिसोड की गायिका हैं, टैलेंट हैं और प्रतिभा हैं, जिनसे मुझे मौका मिल रहा है बात करने का और दोस्तों आपको मिल रहा है मेरी और सोनाली जी की बातचीत सुनने का। लेकिन आप लोग भी और मैं भी एक बात में एडवांटेजेस रहेंगे कि हमें उनके गीतों को सुनने का मौका भी मिलेगा। लेकिन पहले सोनाली जी का स्वागत करते हुए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आई। वी आर ऑनर्ड एंड उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनाली जी पहले हमारे सभी सुनने वाले जो भी इकट्ठा हुए हैं आज की महफिल में, बात कर लीजिए उनसे, अपने दिल से उनके दिल तक। थोड़ा बताइए ना, कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सोनाली जोशी एंड आई एम करेंटली इन बैंगलोर। मैं हूँ मुंबई से, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई, मुंबई and my parents, so apparently I come from a mixed background. My father is a Deshastha Marathi Brahmin married to my mom who is a Konkani, and I am married to a Malayali Catholic boy, and yeah, so that's what I can say about myself. And when it comes to my background, I am a teacher by profession. So I have an experience of say almost 16 years, and I am there in this line of education. I'm very passionate about children, and and simultaneously very, very passionate about singing. So मेरे में ये सिंगिंग का व्हाट यू से दिस हैज बीन इनहेरिटेड इन मी फ्रॉम माय ग्रैंड मॉम, सो माय अज्जी बेसिकली, माय फादर्स मॉम, शी यूज्ड टू एज चिल्ड्रन यूज्ड टू टीच अस ऑल क्लासिकल सॉन्ग्स, राग भूप राग काफी, नॉट दैट आई हैव टू प्रैक्टिस, बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली समहाउ वो खूबी यू नो व्हाट यू कैन से अट्रैक्शन फॉर सिंगिंग स्टार्टेड ग्रोइंग। माय फादर सिंग्स, माय मॉम सिंग्स, माय सिस्टर सिंग्स, एंड या दैट्स ऑल अबाउट। सो एंड आई एम हियर टुडे थैंक्स टू समीर जी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन रेडियो, एंड ऑल्सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मिमिक्री। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गो इनटू competitions for singing and mimicry, and I always was passionate of becoming a radio jockey too, but then I went in the line of teaching, so wo kabhi ho nahi paya.
0: Bahut khoob.
1: So yeah.
0: Amazingly, yeah. Amazingly beautiful. To doston aapne jana ki Sonali ji kaun hai, kya karti hain, to chaliye inke sangeet ka lutf bhi uthaye, in geeton ko sune aur maze le, aur phir wapas aate hain Sonali ji se baat cheet karne ke liye. Lijiye, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गायकी और बहुत ही प्यारी शुरुआत। सोनाली जी, आपने अभी बताया कि यूं तो आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे। अरे क्यों मेरे पेट पे लात मारने को लगी हुई यार, टीचर बन गए अच्छा हुआ। हाँ चलो, आपने बताया कि आप टीचर बन गए, जोक सपाट। बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि मेरी वाइफ भी टीचर है, शी इज एन एकेडमिशियन और खासल खास मैथमेटिक्स की टीचर है, गणित की टीचर है।
1: अरे वाह,
0: वो भी सीनियर क्लासेस। नहीं क्या बात, क्या सोचो ना मेरी जिंदगी कैसे गुजरती है यार। सारी की सारी जिंदगी मेरी कोऑर्डिनेट्स और ट्रिग्नोमेट्री बन के रह गई है। इस अलजेब्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो वेक्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ लेकिन इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत ही शानदार, बस वही मजा आ जाता है।
1: और क्या चाहिए आपको?
0: बस क्या और क्या चाहिए, फूडी हूँ। चलो, टीचर होने के नाते एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, है ना? मजे मजे लेकर बात करेंगे, ओके?
1: जरूर जरूर।
0: टीचर्स किस बिजनेस में होते हैं सोनाली जी?
1: टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के बिजनेस में, उनके ग्रोथ के बिजनेस में होते
0: हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ पढ़ाना, टीचिंग, स्टडी,
1: बराबर,
0: ओके? तो पढ़ाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉ मटेरियल, वो क्या होता है? किताबें,
1: डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली, किताबें, चौक,
0: किताबें, है ना भाई? सारा का सारा कंटेंट तो उधर ही लिखा हुआ है ना?
1: सही बात है।
0: तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ बुक्स। सच बताना, दिल को हाथ लगा के झूठ मत बोलना, कितनी किताबें साल में पढ़ते हो आप?
1: ऑनेस्टली देखने जाए तो बच्चों के साथ कनेक्ट करना इज बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। तो किताबें हो नहीं हो, उनके साथ कनेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आई फील।
0: मैंने ये पूछा सोनाली कि साल भर में कितनी किताबें पढ़ते हो आप?
1: मैं पढ़ लेती हूँ उससे 2 से 3, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता
0: है। वही तो छेड़ रहा हूँ आपको, मैं वही तो छेड़ना चाह रहा हूँ आपके थ्रू सारे टीचर्स को कि यार आप लोग बुक्स के बिजनेस में हो और बुक्स पढ़ते नहीं हो, तो कैसे हलवाई हो जो बर्फी बनानी है लेकिन मावा का इस्तेमाल ही नहीं करते, भला ये क्या बात हुई?
1: सही बात।
0: तो सोचो दोस्तों, टीचर्स बुक्स के बिजनेस में होकर बुक्स नहीं पढ़ते, ये तो कुछ ऐसी बात होगी ना कि कोई गायक गायकी के बिजनेस में होकर गाना ना गाए, ये तो कुछ समझ में नहीं आई ना बात। तो चलिए,
1: सही बात,
0: विचार करो दोस्तों, विचार करो। मैं तो सिर्फ सोनाली को छेड़ रहा था और कोई मेरा पर्पस नहीं था। मैं हाथ जोड़कर सभी टीचरों से माफी चाहूंगा, मैं खुद एक टीचर हूं इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं एक उंगली किसी और के ऊपर उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरे ऊपर भी उठेंगी। नेवर माइंड, जाने दीजिए, लेकिन विचार करने की जरूरत तो है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हुए, पहले तो सोनाली आपके गाए हुए इन गीतों को आपके दोस्तों को सुनवाएं, फिर वापस आते हैं और बातचीत करने के लिए, ठीक है?
1: यस जरूर।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी प्यारी गायकी। चलिए सोनाली जी, अपने संगीत के बारे में बता दीजिए। आपने कहा कि आपको जो संगीत की प्रतिभा का आशीर्वाद मिला वो आपकी दादी से मिला, करेक्ट?
1: सही बात
0: है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे भी बच्चों को दादी नानी ये बहुत प्यारे होते हैं, तो आपको किस तरीके का म्यूजिक का आशीर्वाद दादी से मिला? कहने का मतलब है क्लासिकल, महाराष्ट्रियन, अभंग, गजल, भक्ति, बॉलीवुड म्यूजिक, किस तरीके का, मतलब आपको क्या पसंद है?
1: तो मेरी दादी तो गाती थी सारे अभंग और क्लासिकल सॉन्ग्स, राग्स, तो मैं थोड़े बहुत यहाँ वहां से जो मुझे अच्छे लगते थे मैं वो पिक करती थी। बट फिर बाद में मेरे पिताजी, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे माता पिता भी गाना बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे पिताजी को सारे पुराने वाले गाने, हॉन्टेड मेलेडीज, मोहम्मद रफी, तलत अजीज, तलत महमूद, इन सबके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे करते करते मुझे म्यूजिक के तरफ बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई और फिर मुझे बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा पसंद आने लग गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मुझे म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स ज्यादा समझ में आने लगे और पसंद आने लगे। और हाँ, तब तो उसी वजह से मेरी मेरे इंटरेस्ट एंड रुचि बढ़ गई।
0: ओके सोनाली, एक चीज की मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए। आपने कहा कि आपको लिरिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, करेक्ट?
1: सही बात है।
0: इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना मेरे को। लिरिक्स मतलब एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरे मन में जो आ रहा है ना, जितना मैं समझ पाया वो बोल रहा हूँ। एक बॉलीवुड सॉन्ग है रामपुर का लक्ष्मण, ओके, उसमें किशोर कुमार ने और मे बी आशा भोसले जी ने गाना गाया है वो, गुम है किसी के प्यार में सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं, समथिंग लाइक दैट,
1: राइट?
0: सो मुझे पर्सनली इसकी लिरिक्स बहुत ही ज्यादा, मतलब मोहब्बत में भीगी हुई लगी, अमेजिंगली डीप। मतलब मोहब्बत में दोनों लोग इतने ज्यादा डूबे हुए हैं दैट मुझे ऐसा लगा दे आर वेरी क्लोज टू द गॉड। ओके, सो
1: राइट,
0: ये मेरी तरफ से समझ है। आपने लिरिक कहा कि आपको लिरिक्स पसंद आते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए ना।
1: तो जब मैंने कहा मुझे लिरिक्स पसंद आते हैं, मतलब वो फील होना चाहिए। इवन जब मैं गाना गाती हूँ फॉर माय पैशन ऑफ कोर्स, अगर जब तक मुझे वो फील नहीं होता, मैं दिल से नहीं गा पाती ना वो गाना, तो समहाउ मुझे मजा नहीं आता। तो आई हैव टू, पहले तो मुझे वो गाना समझ में आना चाहिए कि वो गाने का अर्थ मतलब क्या है, और फिर गाने का मजा जो वो फील करते हैं ना, लाइक मैंने जो सिंगर्स को गाते हुए सुना है, सारे पुराने सिंगर से लेके नए सिंगर्स, वो जो इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ गाना गाते हैं ना, वो तभी गा पाते हैं जब उनको उसका अर्थ मीनिंग पता हो। सो दैट इज अ रीजन मेरे लिए अलॉन्ग विथ म्यूजिक लिरिक्स भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे।
0: तो एग्जाम्पल दो ना, जैसे मैंने दिया।
1: अच्छा, गाने का जैसे कि, अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल मैं कल होना होगा गाना, अगर आपने सुना होगा तो मैं एक लाइन गाना चाहूंगी उसका। इट गोज लाइक,

0: ये जो मैंने मूवी देखी है एंड जिसके जो लिरिक्स जो मैंने सुने, इट लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इट सेज अबाउट द इमोशंस. इमोशंस के बारे में बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे को वो प्यार करते हैं और उनको एक दूसरे से बिछड़ना नहीं है और कभी एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना है. तो दैट्स हाउ आई रिलेट, मैं गानों और लिरिक्स को इसी हिसाब से अपने आप ये कर सकती हूँ, एसोसिएट और रिलेट कर सकती हूँ.
1: आई गेट इट, आई गेट इट. तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा. मेरा तो एग्जाम्पल ऐसे ही था, लेकिन सोनाली जी का एग्जाम्पल बिल्कुल डीप था, मीनिंगफुल था. और आपको समझ में आया होगा कि जब आप लिरिक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो गीत कितना खूबसूरत निकल के आता है. चलिए, लिरिक्स के ऊपर ही ख्याल रखते हुए ये प्यारे से गीत इनका आनंद लेते हैं. सोनाली जी ने हमारे लिए ये प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए सोनाली जी, आपके म्यूजिक के बारे में जान लिया, आपको जो आशीर्वाद आपकी दादी से मिला है उसके बारे में भी जाना, फिर आपने लिरिक्स पर ख्याल रखते हो, उसको ध्यान में रखते हुए इमोशंस में डूब कर जब आप गाते हो तो क्वालिटी निकल के आती है। वो एक्सटेम्पोर अभी अभी आपने जो गाया उससे हमें पता भी चल गया। चलिए अब आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं, और उसी ये जो मैं पूछने जा रहा हूं उसमें एक और सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा
1: जरूर।
0: सोनाली जी समझो, इमेजिन करो कि आपको एक शाम के लिए एक पूरा स्टेज किसी बहुत ही पावरफुल ऑडिटोरियम में दे दिया गया कि सोनाली जी ये स्टेज आज की शाम आपका है, आप ही को इसके ऊपर परफॉर्म करना है, एज मैनी सॉन्ग्स एज यू विश टू सिंग, ऑर्केस्ट्रा इज देयर टू हेल्प यू आउट, पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ है लोगों से, ओके और आगे की रोज में ऑल सिंगर्स लाइक मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मनाडे, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, ऑल सोनू निगम एंड शान एंड एवरीबडी सिटिंग आउट देयर,
1: ओके
0: नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज और आप इन सारे लोगों में से किसी एक को स्टेज के ऊपर बुला सकते हो जस्ट टू सपोर्ट यू। वो आएंगे और फिर सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ पीछे पीछे गाएंगे, तो आप किसको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे?
1: पहले तो उन सबके सामने खड़े रह के गाने में ही मेरी जान आधी हो जाएगी। और एक्चुअली अगर कहने जाओ तो मैं किसी एक को बुलाना नहीं चाहूंगी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उन्हें ऊपर बुलाना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। आई वुड रादर प्रेफर, आई वुड गो डाउन एंड मैं उनको अपने साथ, अगर वो आना चाहे तो मैं उनको वहीं, अगर वो जहां बैठे, अगर क्योंकि महफिल तो कहीं से भी जम सकती है, स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर मुझे मौका मिला गाने का तो, एंड वैसे भी आपने बोला पूरी शाम है तो मुझे सारे सिंगर के साथ गाना पसंद होगा वो, बिकॉज एक वो मेरे लाइफ टाइम का सबसे स्वर्ण अवसर होगा जो मैं मिस नहीं करना चाहूंगी।
0: That's very nice and very interesting and बहुत चालाकी से आपने सारे सिंगर्स को लपेट लिया, क्या बात है। मैं तो आपको एक ही सिंगर के लिए मौका दे रहा था और आपने तो वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, that is interesting। Of course इस तरीके का मौका किसी को भी मिल जाए तो वो क्यों ना चाहेगा कि इन सारे लेजेंडरी सिंगर्स के साथ उसको बात करने को मिल जाए, गाना गाने को मिल जाए। I would also love
1: that. मैं एक बोलू, आपने जब अभी जब मुझे ये बोला तो मैं एक्चुअली मंच पे पहुंच चुकी थी।
0: I know.
1: मुझे एक्चुअली विजुअलाइज, मतलब मुझे आपके सामने मेरे दिखने लग गए कि सारे सिंगर्स बैठे हैं एंड मैं उनके पास जाके गा रही हूँ। सो एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए उसके लिए।
0: No, thank you so much. मतलब नॉट टू एग्जाजरेट एंड नॉट टू यू नो से एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें यही है कि मैं इस तरीके से आपको चीज को बताऊं कि आपके सामने वो प्रकट हो जाए, आपको लगे कि वेल आई एम देयर इन इट, और उसका जो नशा होता है ना सोनाली, बहुत प्यारा होता है। मतलब अगर जस्ट इन केस मैं बात करूं, आपके जो ईष्ट देव हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आपको लगेगा आप भक्तिमय हो गए, समथिंग लाइक दैट, यू नो।
1: वेरी ट्रू, सही बात।
0: चलिए तो दोस्तों इमेजिन करिए अपने आप को सोनाली जी की जगह है और विचार करिए कि सोनू निगम, शान, ये सब के सब आपके बगल में आके गाना गाने लग जाएं तो कैसा महसूस होगा आपको। तब तक सोनाली जी के बगल में खड़े होके हम उनके गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं एंड वी विल कम बैक।